يوما

0: पाकिस्तान दोस्त पारसी मुल्क है जै अमुन लाइ तमाम घनी मदद कई। इस्लामाबाद मुफाहिम ते यादाश्त का पोए ईरान का बीहर गालन जो मुतालबो समझ का बाहर है। ईरान न पर अमेरिका इसराइल जंग शुरू कई। ईरान पेंो दिफा कर रो है। ईरानी सदर जो अरब मीडिया के इंटरव्यू में इजहार। मसूद पज़ेशियान चो त ईरान सऊदी अरब से जंगी हालत में ना है। यूएई या खिते के कें बे मुल्क से भी मसलो ना है। खिते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डन में मसलो है। दोस्त पाड़ेसरी मुल्क के पैं सरजमीन तरान से हमलन की इजाजत न दियन घुर्जे। ईरान खिते के समूर मुल्क से सुठा लागापा चाहे तो पर अमेरिका ये कर न तो दे। खिते के समूर मुल्क के एक मेज से वेही खिते में अमन सलामती लाय कम कर घुर्जे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान विच में टेलीफोनिक राबतो। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब में हौसिन के हमलन ए शहरन तोड़े इक्तसादी ढांचे के निशानो बणाइण की मज़म्मत कई। सऊदी अरब की क्यादत अवाम से मुकम्मल बधी जो इजहार। वजीर आजम चो तो हौसिन जो कार्रवाई इलाकई अमुन ए सलामती लिए खतरो आहिन। उहे कार्रवाई आलमी मईशत ए तवानाई की फराहमी में रंडक जो कारण बणजी सघन थियूं। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ए नायब वजीर आजम इसहाक डार से गड शिकतान घटाइण की कोशिशों जारी रखासी। सऊदी वली अहद पारा पाकिस्तान के लागीतो हिमायत ए खिते में अमन लाए पाकिस्तान की कोशिश की सारा। ईरान मुआदे लाए तमाम घणो बेचैन है ए लागीतो राबता कर रो है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा कंदे चो त ईरान जंग विच में मुद्देवार चूंडन का पैर भी खत्म थी सके थी। उनखा पोए तेल जा अघ वधी तेजी से घटी वा। ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का रूस में तेल ठिकाणों से हमला रोकण जो मुतालबो कंदे चो त इन से आलमी सतह से नुकसान थी रो है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस सऊदी अरब के आयल पाइपलाइन से हमला ला इस्तेमाल थियल जाय जो पतो लगाए वरतो। ड्रोन लॉन्चिंग जा औजार तहवील में वरता व्या। इराकी फौजी तर्जमान चो तो इराक पानी सरजमीन के कें बे मुल्क से हमले लाए प्लेटफॉर्म बणजन की इजाज़त न तो दे। नई इराक के कें बे प्रॉक्सी जंग जो हिस्सों थियन दिनों वो। सऊदी परदेही वजारत चो तो इराक में जै जाय पाइपलाइन से हमलो थो उते ईरानी हिमायत मिलल हथियारबंद टोला सरगर्म आन। हमले का पाइपलाइन आर्जी तौर से बंद कई वही है। हुर्मुज़ सुरंग की बंदिश का पाइपलाइन नार खिते के तेल की रसद जो अहम जरियो रही है। बे पास ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची जहा तुर्किया इराकी परदेही वजीरन सा रबता। इलाकई सूरतहाल बतरफन लागापन ए खिते में शिकतान रोकने लाय सफारती कोशिश से गालबोल। सऊदी अरब के शहर जाज़ान में यमनी हौसिन की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह जो मिसाइल हमलो। बजणा जख्मी सऊदी सिविल डिफेंस फौज हमले में मस्जिद केतरन ही घर गाड़ियों के नुकसान थो। यमन में अंसारुल्लाह पारा गाड़े समुंड के स्ट्रेटेजिक बेटन मेवन से कब्जे की दावा। अरब मीडिया मूजिब मेवन बेट से कब्जे का बामल मंतब से हौसिन जो मुकम्मल कंट्रोल थी वो। अंसारुल्लाह चो तो यमनी फोर्सिस के 5,400 चौरस किलोमीटर इलाके का धिके छो है। अरब मीडिया मूजिब अंसारुल्लाह कब्जे हेठ आयल इलाकन में सऊदी हिमायती फोर्सिस के इस्तेमाल हेठ अमरीकी बख्तरबंद टैंक ए लखे डॉलर जो फौजी सामान खड़ी वही। विचोभर में जारी छिकताण ए आलमी मंडी में तेल के वधंदड़ अघन जा असर। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा आवाम लाइ खुसूसी रिलीफ जो ऐलान। मोटरसाइकिल रिक्शा चिंची ए 800 cc ताई गाड़ियों के फी लीटर पेट्रोल से 100 रुपया रिलीफ दिनों वो। मोटरसाइकिल रिक्शा ए चिंची हलाइंदड़न के माहवार 20 लीटर पेट्रोल जडे त 800 cc ताई गाड़ियों के मालिकन के 30 लीटर पेट्रोल तक रिलीफ मिलो। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो अगन में वास आवाम से पवंदड़ बार जो एहसास है। डुखे वक्त में आवाम के अकेलो न छींदी। आवाम से पवंदड़ बार घटने लाए खास स्कीम शुरू कई है। रिलीफ के तरीक़ेकार के आगाही मुहम वसीले आवाम तक पहुंचाए वो। वजीर आजम स्कीम रजिस्ट्रेशन लाए मोटरसाइकिल रिक्शा ए नंढन गाड़ियों की जान दियण से सुबह जहाँ थोड़ा मना।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GFM 90.8।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويعلمك من تاويل الاحاديث, اور تجھے سکھائے گا احادیث یعنی باتوں کی تاویل, باتوں کا مطلب باتوں کی تہ تک پہنچنا, اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور بعین ہی وہی ہو جاتی, اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی, پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی تو یاد آتے تو خواب میں دیکھی تھی, لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا, جب وہ ہو جاتا پھر یاد آتا ہے. تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے, آپ نے فرمایا سچا خواب, میننگ فل خواب. اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں, بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں. یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں. اب تو خیر نبوت ختم ہو گئی نا, لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آیا کرتے تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے. حدیث ہے بخاری کی, اول ما بدء بی الرؤیا الصالحہ, سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے, کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح بعین ہی وہی ہو جاتی تھی. اس سے پریپئر کیا گیا, جیسے یوسف علیہ السلام کو پریپئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پہ پہنچانے والا ہے, اور وہ بیان ہی ایسے ہوا, اگرچہ 40 سال بعد ہوا لیکن ہو گیا. اسی طرح عام انسان اور نیک انسان, سچ بولنے والے لوگ بسا اوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں, اور ایک خواب مثلا ہو سکتا آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آ کے پورا ہوا. بعض اوقات آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں, اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے, حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں, نہ کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए
3: पाकिस्तान दोस्त पारसी मुल्क है जै अमुन लाइ तमाम घनी मदद कई। इस्लामाबाद मुफाहिम ते यादाश्त का पोई ईरान का बीहर गालन जो मुतालबो समझ का बाहर है। ईरान न पर अमेरिका इसराइल जंग शुरू कई। ईरान पैं दिफा कर रो है। ईरानी सदर जो अरब मीडिया के इंटरव्यू में इजहार। मसूद पज़ेशियन चो त ईरान सऊदी अरब से जंगी हालत में ना है। यूएई या खिते के कें बे मुल्क से भी मसलो ना है। खिते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डन में मसलो है। दोस्त पाड़ेसरी मुल्क के पैं सरजमीन तरान से हमलन की इजाजत न दियण घुर्जे। ईरान खिते के समूर मुल्क से सुठा लागापा चाहे तो पर अमेरिका ये कर नो डे। खिते के समूर मुल्क के एक मेज से वेही खिते में अमन सलामती लाय कम कर घुर्जे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान विच में टेलीफोनिक राबतो। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब में हौसिन के हमलन ए शहरन तोड़े इक्तसादी ढांचे के निशानो बणाइण की मज़म्मत कई। सऊदी अरब की क्यादत अवाम से मुकम्मल बधी जो इजहार। वजीर आजम चो तो हौसिन जो कार्रवाई इलाक़ी अमुन ए सलामती लाइ खतरो आहिन। उहे कार्रवाई आलमी मईशत ए तवानाई की फराहमी में रंडक जो कारण बणजी सघन थियूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ए नायब वजीर आजम एहसाक डार सां गॾु शिकताण घटाइण जूं कोशिशूं जारी रखंदासीं। सऊदी वलीहद पारां पाकिस्तान जे लाॻीतो हिमायत ऐं खिते मामल लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि जी साराह। ईरान मुआदे लाइ तमामु घणो बेचैन आहे ऐं लाॻीतो राबता करे रहियो आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा कंदे चयो त ईरान जंग विच में मुदे वारनि चूंडुनि खां पहिरीं बि ख़तमु थी सघे थी। हुन खां पोइ तेल जा अघु वधी तेज़ीअ सां घटिजी वेंदा। ट्रंप यूक्रेन जे सदर ज़ेलेंस्की खां रूस समेत तेल ठिकाणनि ते हमला रोकण जो मुतालबो कंदे चयो त हिन सां आलमी सतह ते नुक़सान थी रहियो आहे। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सिस सऊदी अरब जे आयल पाइप लाइन ते हमला लाइ इस्तेमाल थियल जाइ जो पतो लॻाए वरितो। ड्रोन लॉन्चिंग जा औज़ार तहवील में वरिता विया। इराकी फ़ौजी तर्जुमान चयो त इराक पंहिंजी सरज़मीन खे कंहिं ॿिए मुल्क ते हमले लाइ प्लेटफॉर्म बणजण जी इजाज़त नथो ॾिए। नई इराक खे कंहिं ॿिए प्रॉक्सी जंग जो हिसो थियणु ॾिनो वेंदो। सऊदी परॾेही वज़ारत चयो त इराक मां जंहिं जाइ तां पाइप लाइन ते हमिलो थियो उते ईरानी हिमायत मिलियल हथियारबंद टोला सरगर्म आहिनि। हमले खां पोइ पाइप लाइन आरसी तौर ते बंदि कई वई आहे। हुर्मुज़ लंग जी बंदिश खां पोइ उहा पाइप लाइन नार खिते जे तेल जी रसद जो अहम ज़रियो रही आहे। ॿिए पासे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची जा तुर्किया ऐं इराकी परॾेही वज़ीरनि सां राबता। इलाइक़ी सूरतहाल ॿतरफ़न लाॻापल ऐं खिते में शिकताण रोकण लाइ सफ़ारती कोशिशुनि ते ॻाल्हि ॿोल। सऊदी अरब जे शहर जाज़ान में यमनी हौसिन जी अक्सरियती तनज़ीम अंसारुल्लाह जो मिसाइल हमिलो। ॿ ॼणा ज़ख़्मी सऊदी सिविल डिफेंस फौज हमले में मस्जिद केतिरनि ई घरनि ऐं गाॾियुनि खे नुक़सान थियो। यमन में अंसारुल्लाह पारां गाड़े समुंड जे स्ट्रेटेजिक ॿेटनि मेवनि ते कब्ज़े जी दावा। अरब मीडिया मूजिबि मेवनि ॿेट ते कब्ज़े खां पोइ बामल मंतब ते हौसिन जो मुकमल कंट्रोल थी वियो। अंसारुल्लाह चयो त यमनी फोर्सिस खे 5,400 चौरस किलोमीटर इलाइक़े खां पोइ ते धिके छॾियो आहे। अरब मीडिया मूजिबि अंसारुल्लाह कब्ज़े हेठि आयल इलाइक़नि मां सऊदी हिमायती फोर्सिस जे इस्तेमालु हेठि अमरीकी बख्तरबंद टैंक ऐं लखे डॉलर जो फ़ौजी सामान खणी वई। विचोबर में जारी छिकताण ऐं आलमी मंडी में तेल जे वधंदड़।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाक खाक देवे सुदिल का सुनो यार सरो पानूर मिया उई वेस चंगे।

हे हुसन दामल सब कोई जाने हुसन खास जहूर जात दा है अहमद नाम सदावे विच अरब सुना जाने उजात सिफात दा है कुर्सी अर्श ते हूर मलक अकसुई आली दर जात दा है शमा हुसन दा

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तुम्हारे

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin to Raz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: जायता पाइपलाइन ते हमलो थियो उते ईरानी हिमायत मिलियल हथियार टोला सरगर्म आहिनि हमले खां पोइ पाइपलाइन आरसी तौर ते बंदि कई वई आहे हुर्मुज़ लंग जी बंदिश खां पोइ उहा पाइपलाइन नार खिते जे तेल जी रस जो अहम ज़रियो रही आहे ॿिए पासे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची जा तुर्किया ऐं इराकी परॾेही वज़ीरनि सां राबता इलाइक़ाई सूरताल ॿतरफ़नि लाॻापल ऐं खिते में रोकण लाइ सफ़ारती कोशिशुनि ते ॻाल्हि ॿोल सऊदी अरब जे शहर जाज़ान में यमनी हौसिन जी अक्सरियती तनज़ीम अंसारुल्लाह जो मिसाइल हमिलो ॿ ॼणा ज़ख़्मी सऊदी सिविल डिफेंस फौज हमले में मस्जिद केतिरनि ई घरनि ऐं गाॾियुनि खे नुक़सानु थियो यमन में अंसारुल्लाह पारां गाड़े समुंड जे स्ट्रेटेजिक ॿेटनि मेवनि ते कब्ज़े जी दावा अरब मीडिया मूजिबि मेवन ॿेट ते कब्ज़े खां पोइ बामल मंतब ते हौसिन जो मुकमल कंट्रोल थी वियो अंसारुल्लाह चयो त यमनी फोर्सिस खे 5,400 चौरस किलोमीटर इलाइक़े खां पोइ ते धिके छॾियो आहे अरब मीडिया मूजिबि अंसारुल्लाह कब्ज़े हेठि आयल इलाइक़नि मां सऊदी हिमायती फोर्सिस जे इस्तेमालु हेठि अमरीकी बख्तरबंद टैंक ऐं लखें डॉलर जो फ़ौजी सामान खणी वई विचोभर में जारी छिकताण ऐं आलमी मंडी में तेल जे वधंदड़ अघनि जा असर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां आवाम लाइ ख़ुसूसी रिलीफ जो इलाज मोटर साइकिल रिक्शा चिंची ऐं 800 cc ताईं गाॾियुनि खे फी लीटर पेट्रोल ते 100 रुपया रिलीफ ॾिनो वियो मोटर साइकिल रिक्शा ऐं चिंची हलाईंदड़नि खे माहवार 20 लीटर पेट्रोल जॾहिं त 800 cc ताईं गाॾियुनि जे मालिकनि खे 30 लीटर पेट्रोल ताईं रिलीफ मिलंदो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त अघनि में वाध सां आवाम ते पवंदड़ भार जो अहसासु आहे ॾुखे वक़्त में आवाम खे अकेलो न छॾींदासीं आवाम ते पवंदड़ भार घटाइण लाइ ख़ासि स्कीम शुरू कई आहे रिलीफ जे तरीक़ेकार खे आगाही मुहिम वसीले आवाम ताईं पहुचायो वेंदो वज़ीर आज़म स्कीम रजिस्ट्रेशन लाइ मोटर साइकिल रिक्शा ऐं नंढियुनि गाॾियुनि जी ॼाण ॾियण ते सुबुह जा थोरा मञा मीरपुर माथिरो भरिसां नौजवान जो गोलियूं लॻल लाश हथ वारसनि पारां पुलिस ते क़तल करण जो इल्ज़ाम दरगाह दीनशाह भरिसां नौजवान रऊब बोज़दार जो गोलियूं लॻल लाश हथ आयो वारसनि पारां जरवार रोड ते लाश रखी एहतजाज वारसनि चयो त पुलिस नौजवान खे मंशियात फरोची जे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करण बाद क़तलु कयो आहे ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ु केस दाख़िल करण जो मुतालबो ॿिए पासे मीरपुर माथिरो पुलिस जो वाक़िए ऐं इल्ज़ामनि बाबति मौक़िफ़ साम्हूं आयो

जकाबाद में पी पी एम एन एजाज जखरानी के नंढे भाउ के गिरफ़्तार करण की कोशिश। सी आई ऐं सदर थाणे जी पुलिस खालिद जखरानी जे काफ़िले खे रोके गाॾियुनि जी झड़ती वरिती। वॾे अंग में बिरादरी जा माण्हू पहुचण ते पुलिस खालिद जखरानी खे छॾे ॾिनो ऐं वापसि हली वई। ॿिए पासे आज़ाद जखरानी चयो त एजाज जखरानी जी चुर्च ते पुलिस नंढे भाउ खालिद खे गिरफ़्तार करण जी कोशिश कई। एजाज जखरानी जो नंढनि भाइरनि खालिद ऐं आज़ाद जखरानी सां कुझु अर्से खां तकरार हलंदड़ आहे। वाक़िए ते जेका वक़्तु पुलिस जो मौक़ुफ़ साम्हूं आयो।

शिकारपुर जिमखाने में नौजवान मोबाइल आबगात कर छो मस्तल शाह पाड़े के रवासी नौजवान शाविद शाह पिस्टल जा फायर कर आबगात किया। जिमखाने के अमले पारा इतला दिन से पुलिस पची लाश अस्पताल मुंतकिल किया। आबगात का अगु नौजवान जो सोशल मीडिया से रखल नोट सामने अची वो। नौजवान पांजे नोट में वालिद से मोहब्बत का इजहार कदे अदालत में पेशी से शर्मसारी का इजहार किया। टंड मोहम्मद खान भरसा पब्लिक हेल्थ खाते की संगीन गफलत मासूम बार का हयाती खसे वरती। शौकत कॉलोनी में कटर लाइन विछाने लाय रखल पाइप निगर मथा किरी पो। पंज वर के आबिद चौहान दबजी फोत इलाके वासन गरियल कोशिश से पाइप हटाए लाश बाहर कढ़ो। वारसन चो तो पब्लिक हेल्थ खाते के अमलदार गटर लाइन विछाने लाय सीमेंट जहा पाइप रखा निगर बेन बारों से किरी रो तो पाइप खिसकण बाद मथा किरी पो। आला अख्तियार का वाक्य जो नोटिस वी जिम्मेदार खिलाफ कार्रवाई का मुतालबो। शहजादपुर वासी डिग्री कॉलेज के प्लाट से मुबैना कब्जे खिलाफ सराफा एहतजाज। डिग्री कॉलेज बचाओ कमेटी के सद से प्रेस क्लब वो एहतजाज। सियासी समाजी तंजीमों के अगवाण सूधो वे अंग में शहर की शिरकत। पब्लिक हेल्थ खाते मथा पंपिंग स्टेशन की अडावत के बहाने से कॉलेज के प्लाट से कब्जो कर इल्ज़ाम। आला अख्तियार के नोटिस वी प्लाट कॉलेज के वापस कराने का मुतालबो। बाडे में खुराक खाते की टीम पारा पुलिस और इंतजामिया की मदद से जीवन दास राइस मिल से गोदाम से छापो। 4000 मह कणक तहवील में वही लाड़कानों मुंतकिल कर छी। अख्तियार जे व्यापारी कणक विक्रो कर रहा है वे खुराक खाते का रसीदू लाजमी वन सील कल गोदाम की समूरी कणक तहवील में वरती वही है। बे पास व्यापार मूजिब अगुणों फूड इंस्पेक्टर और मुख्तियारकार लाड़कानों ट्रक जरिए कणक खी वह उन सीसीटीवी फुटेजेस और रसीदू भी मौजूद हैं। खुराक खाते कणक के केतर ही व्यापार के अजा तक रकम की अदायगी न कई है। ऐसन के मुख्तलिफ़ इलाक में किथे हल्की तो किथे तेज बरसात। बतीन टंडोबागो पिंगरियो कोट गुलाम अहमद और भरपासे में वरसकारो। पिंगरियो के गोठ बचल अहमद आणी में वेज किरण के नतीजे में एक गोठानो जख्मी। कुनरी सीराणी ए शादी लार्ज सिधो बेन इलाक में तेज वरसकारो। मौसमियात खाते पारा बरसात जो सिलसिलो 15 सितंबर तक जारी रहने की अक थी। थरपारकर उमरकोट मीरपुर खास बतीन ठठो सिजावल और टंडो मोहम्मद खान में बरसात का इम्कान। कराची सांगड़ खेरपुर हैदराबाद मटियारी जामछोरे सिलन में वसकारो जमकान जा।

0: अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में वली कार आऊं या फरहान कलहड़ो हिले सवा डिठी तफ़सील खबरूं शॉर्ट ब्रेक का पोए।
1: क्या आपके बाल कमजोर, बेजान और टूटने लगे हैं? अब हल है मोहेयर शैम्पू बाय सिग्नेचर ब्यूटी। 90% कुदरती जड़ी बूटियों और अज्जा से तैयार करता सल्फेट फ्री फॉर्मूला जो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये शैम्पू खुश्की कम करे, जड़ों की मरम्मत करे और कुदरती हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करे। मोहेयर शैम्पू सिग्नेचर ब्यूटी, वेयर ब्यूटी मीट्स नेचर। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट thesignaturebeauty.com पर अपना ऑर्डर प्लेस करें या मजीद मालूमात के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें 0326-835-1089।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

الوريد وطن آوينداس مارون سام لنداس هي کوٹھيون چھڈے

घरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजल से सचू की सूमरा ओ जय सती सतुन छदियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहनोई न लजाई जा सागिल सदाई उहा मार

0: किताब पढ़ी वल रोवल खौफ कनु हिक रब दे रात ओडी हां डरी वल ए सब गालियां ए हां जे हां दे कर कन सुनी वल ए सच लईए तो मकसद मूल न लहस रुगो मुंह जा विचित मरी वल रात ओडी हां डरी वल ए सब गालियां ए हां जे हां दे कर कन सुनी वल ए सच लईए तो मकसद मूल न लहस रुगो मुंह जा विचित मरी वल
1: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Watching 12 p.m.
3: Aap sun rahe the.
5: वेचा ओभर में छिकताण सबब आलमी मार्केट में तेल की कीमत में वधिक वा थी भई ब्रेंड क्रूड ऑयल की कीमत $108 फी बैरल ताई पची भई WTI क्रूड ऑयल की कीमत $103 मरबान क्रूड ऑयल की कीमत $120 फी बैरल थी भई

घोट की अदालत गोठाने मलण छर के कपड़न का आजो करे तशद्दुद करण वाले केस में अगुणे एसएचओ काबिल भयो के जेल बाणी छड़ियो। बिंडियन जो रिमांड पूरो थियण ते काबिल भयो अदालत में पेश। अदालत जवाबदार काबिल भयो के जेल उमाण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अगुणे एसएचओ काबिल भयो आदल सुधराणी थाने ते एक नौजवान के गिरफ्तार करण बाद लॉकअप में कपड़न का आजो करे वीडियो रिकॉर्ड कई हुई। मेयर के कचे में जतोई आलमानी तकरार में एक वाटाड़ू नौजवान मार बो जख्मी। भंडबाड़ी थाने की हद में हथियारबंदन मोटरसाइकिल सवार भायरन मथा फायरिंग कई। फायरिंग के नतीजे में गोठ जाम भुट वासी 33 वर जो जफर अली पुट मोहम्मद हयात भुट थड़े ते कतुल। लाश मेयर तालुके अस्पताल मुंतकिल। मकतूल के भाव गुलजार भुट मुजिब पार वही रहा हुआ त हथियारबंदन फायरिंग कई। दाहूँ भी क्यों त वाटाड़ू आयु पर दाह न बुधी वही।

लाड़काणी में क़त्ल थियल नारीअ नौजवाननि जा लाश SP चौक ते रखी धणो, ट्रैफिक मुअतल। घोटु समई उनड़ वासी लक्ष्मी नूर उनड़ ऐं नारी नुसरत उर्फ़ गुजर उनड़ जा वारस औरतुनि ऐं ॿारनि समेत सराबा एहतजाज। SHO बकापुर ते केस दाख़िल न करण जा इल्ज़ाम। वारसनि मूजिबि गुज़िरियल ॾींहुं जवाबदारनि गुलज़ार हबीब राहिब ऐं अरशद उनड़ वारनि लक्ष्मीर ऐं नुसरत उनड़ खे बेगुनाह क़त्ल करे छॾियो। जवाबदार हिकु औरत ऐं हिकु नीगर खे बि अॻवा करे विया। SHO बकापुर केस दाख़िल करण खां इनकार करे छॾियो आहे। जवाबदार गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फ़राहम करण जो मुतालबो

खैरापुर भरसां शादी तकरीब दौरान फायरिंग में निंगर मार्च वियो। शालत तीब थाने जी हद गोठ शहीद खान इलाको में शादी की तकरीब दौरान फायरिंग के नतीजे में ब निंगर अली जमान उर्फ शाह जमान है शाहिदा धारे जो जख्मी थी पाया सिविल अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में अली जमान उर्फ शाह जमान जख्म जसुर नसंदे दम दे छो। शादी जो खुशियों मातम में तब्दील

ऐं बदीन शहर मां अणॼातल शख़्स जो बोरीबंद लाश थिए। मीरवा भरिसां हथायल अणॼातल शख़्स जो बोरीबंद लाश इलाइक़े वासियुनि जे इतलाउ ते पुलिस पहुची तवील वठी इस्पताल मुंतक़िल कयो। सुञाणप न थी सघी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: जीएफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: चिकन चाक ओ मुखम मसवाक डूंगरो

بن میں چائین علاؤ تے من پشائین تہیت

कर दे सिव्या तन जी का गल कर खबर सब मड़ाया सोन में पकी तुझा पर ओ भूमि मथों घर।

तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: KP के जुल्मकार हमीद हैं चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह अदालत में पेश था. चीफ सेक्रेटरी हैं IG KP हल्फी बयान अदालत में जमा कराए हो. विच ओभर में छिकताण सबब आलमी मार्केट में तेल की कीमत में वाध थी वही. ब्रेंड क्रूड ऑयल की कीमत $108 प्रति बैरल तक पहुंची वही. WTI क्रूड ऑयल की कीमत $103 और मरबान क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल थी वही.

बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान खिलाफ़ कार्रवाइयूं, कमांडर समेत नव दहशतगर्द मारे विया। सिक्योरिटी ज़रन मूजिब मस्तोंग में गाड़ी क्वाड कॉप्टर के जरिए निशानो बढ़ाया वो, कमांडर समेत टे दहशतगर्द मारे विया। पश्चिम के इलाके सराना में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में छह दहशतगर्द मारे विया। फायरिंग की डेवट दौरान चार अलकार जख्मी थी पाया। सीटीडी तर्जमान मूजिब मार दहशतगर्द फोर्सेज आम शहरों से हमलों में मुलव हुआ। बदिनचर में एक शख्स जो गोली लगल बोरीबंद लाश थे, लाश अस्पताल मुंतकिल। सुप टंडो बागो के गोठ परल बुलेदी वासी हाकिम पुट अलह बचाया शाहतौर थी। पुलिस जरन मूजिब जिस्म से तशद ज निशाना मौतूल के खीसे में ब मोबाइल फोन हथाया जांच कई पी। लाड़काणी में कतल थियल नारी ए नौजवान ज लाश एसपी चौक से रखी धरणो, ट्रैफिक मुतल। गोठ समय उनड़ वासी लखमीर उनड़ ए नारी नुसरत उर्फ गुजर उनड़ जा वारस औरतुन ए बारन समेत सराप एहतजाज। एसएचओ बकापुर ते केस दाखिल न करण जा इल्ज़ाम। वारसन मूजिब गुजरल डी जवाबदारन गुलजार हबीब रायब ए अरशद उनड़ वारन लखमीर ए नुसरत उनड़ के बेगुनाह कतल कर छो। जवाबदार एक औरत ए नींगर के भी अगवा कर विया। एसएचओ बकापुर केस दाखिल करने का इनकार कर छो है। जवाबदार गिरफ्तार कर इंसाफ फराम करने जो मुतालबो।

मेहर जे कचे में जतोई अलमाणी तकरार में एक वाटाड़ू नौजवान कतल। मनमाड़ी थाने जी हद हथियारबंद मोटरसाइकिल सवार बिन भाइरन मथा फायरिंग कई। गोलियों लगण सबब गोठ जाम भुटवासी 33 वरन जे नौजवान जफर पुट हयात भुट दम ॾेई छॾियो। लाश अस्पताल मुंतकिल। मक्तूल जे भाउ गुलज़ार भुट जो चवण आहे त असां दाऊं कयूं त वाटाड़ू आहियूं, पर उन बावजूद जवाबदारनि फायरिंग कई।

खेरापुर में शादी की तकरीब दौरान फायरिंग गोली लगने सबब निंगर मार चालातीब थाने की हद गोठ सईद लाखो में शादी की तकरीब दौरान फायरिंग में बनीगर अली जमान उर्फ शाह जमान है साई दाद धारे जो जख्मी थी पया निगर अली जमान अस्पताल में दम डनो शादी की खुशियों मातम में तब्दील घोटकी की अदालत गोठाने मलहण शर के कपड़न का आजो करे तशद्दुद करण वाले केस में अगूणे एस एच ओ काबिल भयो के जेल माणी छो बिन्नी जो जिस्मानी रिमांड पूरा थे बाद पुलिस काबिल भयो के अदालत तारों पेश कर अदालत खेस जेल उमान जो हुक्म दिनों अगूणे एस एच ओ काबिल भयो आंदल सुधरानी थाने से गोठाने मलहण शर के गिरफ्तार करने बाद लॉकअप में कपड़न का आजो करे तशद्दुद किया हो।

0: ऐं घारे जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जो पाणी बंदि, रहवासियुनि जो कराची ठटो, रोड ते धरणो, ट्रैफिक मुतल। एहतजाज कंदड़ ॻोठाणनि जो चवणु आहे त बासरनि केडीए बा मां ॻोठु नूर मोहम्मद तईम, आरब अली जो अब्दुला मीरबर ऐं ॿिनि ॻोठनि जो पाणी बंदि करे छॾियो आहे। नोटिस वठण जो मुतालबो। असिस्टेंट कमिशनर मीरपुर साकरो धरणे बारे हंधु पहुची मुज़ाहिरनि सां ॻाल्हियूं कयूं। ख़ातिरी बाद धरणो ख़तमु।
1: इंडस अस्पताल घोटकी में
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: साथ ही सिंध की एक और पहचान
0: FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय तंदले तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम के समंद है चादों की बारिश और आसमान खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसे कल तक इस पास से शाम तक दिन से रात नींद से जागते जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांसे तब दम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माधली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव इट्स टाइम बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के मुताबिक

fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan, naam to suna hi hoga. सो आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम करने के साथ साथ बिल्कुल चीज है आपने हाल चाल बताते जाइए. सो डियर लिसनर्स अंत की फहालत कैसे है आपकी हालत शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे. तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली. आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं. तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक. बिल्कुल ही 2 घंटे हमारे पास मौजूद है. इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं इन्नी शाली बातें और इन्नी शाली बातों में जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र भी होने वाला है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो शेयर कीजिए. क्योंकि जनाब शेयरिंग इज केयरिंग होती है. और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए आगे फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी. ऐसे बहुत सारी अंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए. आपको कहेंगे वेरी वेल गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की इस्तेमाल आने का काम करती है भाई जान ये सिद्रा. तो बिल्कुल आपके होंठों 440 उल्की इस्तेमाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं. और आगे से प्रोग्राम जो करेंगे तो जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास एक कलाम मौजूद है प्लस नाद. तो हम जरा प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ. उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है. बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल कीजिए और हसीन होते जाइए.

आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि ना सिर्फ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती कैसे बढ़ने वाली, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे पर कितनी अच्छी वाली खूबसूरती आपको मिलने वाली है। तो चाहे आप मर्द हैं जाते हैं, चाहे आप खवातीन हैं, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे होते हैं जनाब, थोड़े बहुत से आगे खर्चे भी कराते हैं। अगर आप भी जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं और खूबसूरती को जरा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल आप लोगों के लिए है। अच्छा, साथ साथ हम बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोग किस तरह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, यानी कि शामली प्रोग्राम कैसे होंगे वो भी बताते हैं, और साथ साथ आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि भाई हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी हमारी ऐसा दिल चाहता है कि भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। भाई हाँ, तो ऐसा होता है कि हर किसी की ये भी ख्वाहिश होती है तकरीबन कि भाई हमें अगर चांस मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ चीज, जैसे घूमना फिरना, किसी बाहर जाना, कौन सा मुल्क देखना, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो कि हम विजिट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि जेब जो है ना वो जरा इजाजत नहीं देती। तो आज आप मुझे जरा ये बताएंगे कि अगर आपको फ्री में, हाँ जी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में वो जगह घूमने का मौका मिले जो कि आपकी भाई फेवरेट डेस्टिनेशन है, फेवरेट आपकी जगह है, तो आप फिर मुझे बताएं कहाँ जाना पसंद करेंगे। भाई मुफ्त में तो चौना नगर दिखो भी दे कोई भी खाई बिंदु आए, तो तुम मुझे बताए अगर तमहान जी कोई भी फेवरेट जगह आई होती तवा के मुफ्त में मोकलियो बनी तो तवा गाड़ी वन पसंद करना, ठीक है। सो बिल्कुल अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8821 पर। और अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, आप हमारा सर्च करेंगे पेज तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। बिल्कुल जी, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, इससे ये होता है कि बहुत ज्यादा वाले लोगों के पास हमारी पोस्ट जहाँ पहुंचती है ठा करके बजती है। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक किया करें और शेयर किया करें, दोस्तों को मेंशन कीजिए, उनको भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की चर्चे चल रहे हैं मेरी जान। आप मुझे बताने वाले अगर आपके कोई फेवरेट जगह हो जहाँ पर आपको मुफ्त में जाने का मौका मिल जाए तो आप कहाँ पर जाएंगे। हाँ जी, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपके अच्छे अच्छे जवाब मुझे मिल सकते हैं। ओके, सो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ फरवा गुल मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कहती गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। हाय आपी, आप कैसी हैं? आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं? फरवा मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ, आप हमें सुन रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। और साजिद अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, के फहाल में ठीक हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं? और फहीम भाई हमारे साथ कहते हैं, विसरे सारो लोक शालना विसरे तू तोखे केडो मुंह सांढ्यो आहे साह में। अस्सलाम वालेकुम, मौला अली सलाम अदद अदा छा लाए खुश आयो सफा चा को स्लेट कलम मस्जिद डवी। प्रोग्राम तो लाजवाब आहे अवां वांगे। अच्छा, गानो तमा लिखियो आ, ठीक है, मां गानो तमा जो बिल्कुल हलाइंदस आई, थैंक यू तमा से सगड आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई को न बुधायो। और लिखते हैं कि अब किसी से उलझने का दिल नहीं करता, आप सही में गलत और बात खत्म। अच्छा, आप सही में गलत और बात खत्म, सही है जी, सही है, ऐसा व्यक्ति ये कंदाजी कहते हैं, बिल्कुल घर वालों के ताने डेली सुनते हैं। हाँ, हुआ गाला ना, मुझे खबर है ता घर वालों जा ताना बुधन आयो आई ताना बुध करी पोता मुझे प्रोग्राम में गाना बुधन नहीं दायो ये न। चलें कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा सा, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। और यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम हो गया जी। और शुएब मंकी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं? और आपने प्रोग्राम की तारीफ कर दी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ, गुड आफ्टरनून, आपको भी वेलकम कहा जाता है। हिदायतुल्लाह कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है, ये गाना तो चला
ओके मां ॾिसां थी सभु गाना हलाइण जी कोशिश कयूं था. अच्छा हुन खां अलावा अख़लाक़ भाई बि प्रोग्राम में आ चुके हैं. हेलो हेलो जी आंसर तव्हां ॾिनो आहे मदीना. ओके क्या बात है जबरदस्त. सिकंदर अली हमारे साथ ही यानी कि सालार सिकंदर वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको. और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट आयो आ वेलकम करे इसे स्मार्ट वेलकम वेलकम. ओके जी और मोहम्मद राशिद अमान भी हमें सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम खुश रहें जी. आप भी फोजिया सुमरों का गाना सुनना चाहते हैं. मैं कोशिश करूंगी सबके गाने लगाऊं. और हिदायतुल्ला कहते हैं जवाब है पहले तो मदीना घूमूंगा फिर अगर पैसे बचे तो तुर्की जाऊंगा. अच्छा वहीं भाई कहते हैं टॉपिक लंदन. ओके और अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदी अमां की वेलकम कयूं था भले प्रोग्राम में. अच्छा तुम आए हो तो लगता है जैसे बहारों का कोई मौसम आया हो. खुश आमदीद कि तुम आए महफिल में यूं जिस तरह सुबह नौ में आमदे सहर हो. ओके और रशीद खोसो भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं. वालेकुम अस्सलाम पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम मीरपुर खास से आप हमारा शो सुन रहे हैं जी खुश आमदीद. और साथ साथ आप बस टॉपिक को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम किस किस ने इस्तेमाल की और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी या फिर नहीं. क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही. भाई मिलनी चाहिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इतने सारे फायदे हैं तो भाई आप फायदा उठाइए. वैसे तो हर चीज से फायदा उठाते तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से भी फायदा उठाइए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई सिद्रा इतना क्यों बताते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेरी तो पर्सनली भाई फेवरेट क्रीम है. क्योंकि सबसे पहली बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है. तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है जो भाई आप लोगों की स्किन की हिफाजत भी करेगा आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा आपके चेहरे के जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे भी दूर कर देगी. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. तो भाई जाइए परचेज कीजिए और माल लूट लो भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लो. और साथ साथ यहाँ पर टाइम भी हुआ चाहता है कि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना.

लाइव में क्या मसला है मुझे जरा तफसील से बताइए ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्या मसला चल रहा है लाइव में, या फिर एक इंसान बताएगा तो मुझे ये लगेगा कि बस सिर्फ उन्हीं की है शायद ये मसला है, कुछ और भी लोग बताएं कि लाइव सही चल रही है नहीं, ताकि हम देखें कि वाकई भाई लाइव में मसला है या बस आप ही का नेटवर्क खराब होगा।

बात है, बहुत ही प्यारे से गाना एंजॉय कर रहे हैं, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो जरा पता तो चले. अच्छा यहाँ पर साजिद भाई लिखते हैं कि मोहम्मद दाबिश और मोहम्मद हसी भी आपका शो सुन रहे हैं जनाब, दोनों को वेलकम कहते हैं.

आपने जो सिफारिश वाला कमेंट कर दिया है कि सिफारिशें इधर तो नहीं चलती, अगर हाँ ऐसी बात है आप उसकी सिफारिश करेंगे तो क्या पता आपके मैसेज गाने चलना बंद हो जाए। तो ये किसी की भी सिफारिश ये काम मत किया करें, बीच वाला काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस प्रोग्राम में आया करें, सुकून से प्रोग्राम को एंजॉय किया करें, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मसला है वो उन्हें बोलें कि आप खुद ही मैनेज कर लें, ठीक है। आप उनके बीच में मत आइए वरना आगे जाकर वही लोग आपको नुकसान देंगे, फिर आप रुलते फिरेंगे और बोलेंगे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जरा लोगों के मसलों में मत पड़िए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, सुकून से प्रोग्राम में आइए, एंजॉय कीजिए और चिल मारिए जिंदगी में।

करना पसंद करेंगे बताएं मुझे, फ्री में अगर आपको कहीं जाने का चांस मिल जाए भाई क्या बात है बड़ी अच्छी ऑफर है वैसे। अच्छा इकबाल आशारी भाई बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। सज्जाद भाई कहते हैं कि मदीना जाना पसंद करूंगा, बहुत बढ़िया जी। अच्छा अनमोल भाई कहते हैं यदि सबनी से गाना हलायो सवाब खटियो, गाना हलायन तो गुनाह आए इंसान पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाता है, हम बस ये थोड़ा सा गुनाह ले लेते हैं। अच्छा अली गुलाम बिरोही भाई हमें सुन रहे कहते हैं माशूक शर को प्ले करें, भाई मत बोले ऐसी फरमाइशें। अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक ऐसा मौका मिले तो जो अच्छा वैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को पता ना ही चले तो बेहतर होता है। और अगर आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है जी, आप जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए और डे स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा पूछिए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करानी बाकी रहती है, क्योंकि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर डे स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होगी तो फिर आपके लिए मजे होंगे ना, बस जाएंगे परचेज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला, नो टेंशन, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए।

क्या बात है, रीज़ ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, बताइए जरा, शेयर किया करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, इस्तेमाल कीजिए। रीज़ ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई मतलब हर कोई, चाहे आप मर्द हंसाते हैं, चाहे आप खवातीन, आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के ऊपर रीज़ ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि रीज़ ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और जनाब, रीज़ ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, तो इस्तेमाल कीजिए बिना देरी और बिना सोचे।

राय को शेयर करते रहिए। और यहाँ पर गुलाम फरीद बलोच लिखते हैं कि जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है ना, तो अक्सर वो लोग भी साथ छोड़ जाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा मान होता है। अपने पेड़ों पर खड़े होना सीखे और खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाए कि किसी का सहारा ना लेना पड़े। मुश्किल में सिर्फ आप ही अपने आप को संभाल सकते हैं। लोग सिर्फ आपकी कामयाबी का हिस्सा बनते हैं, आपकी तकलीफ का नहीं। इसीलिए दूसरों से तवक्कात कम रखें और अपनी ज़ात से मोहब्बत करना सीखें। ये चीज

0: बात है जी, ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। अच्छा दर्दी दिल हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं स्वीटी। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में स्वीडन जाना पसंद करूंगा। ओके क्यों जाएंगे वैसे वहाँ। अच्छा यहाँ पर बाहर इरफान सियाल साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद के लिए ग्रेट होस्टिंग में आर जी। गुड आफ्टरनून, हेलो सर, वेलकम सर। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि फेस वॉश चाहिए डी स्किन का। हाँ जी, आप कॉल करके मालूमात लीजिएगा कि डी स्किन का फेस वॉश कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ताकि आप वहाँ से जाकर आराम से परचेज कर सकें। ठीक है।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
0: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
3: You are watching 2 p.m. bulletin.
4: कहीं सियासी जमायत पब्लिक ऑफिस होल्डर वटे इस्लामाबाद जा रोड बंद करण जो अख्तियार ना है। सूबन जा वडा वजीर यकीनी बणाइन त सरकारी मशीनरी सियासी जमायत जे एहतजाज में इस्तेमाल न थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI जे एहतजाज ए लॉन्ग मार्च खिलाफ केस जो फैसलो बुधाईंदे दरख्वास्त ओकलाए छॾी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर चयो त जेकॾहिं को गैरकानूनी ऐं गैरआइनी इस्तेमाल थिए थो त उनखे रोकियो वञे। गैरकानूनी ऐं गैरआइनी क़दमनि खे रोकण सां गॾु मुज़ाहिरनि खे छॾो छॾ बि कयो वेंदो। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जी सरबराई में टे रुकनी बेंच दरख़्वास्त ॿुधणी लाई। बेंच में जस्टिस आज़म खान ऐं जस्टिस आसिफ शामिल हुआ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद मलिक, प्रोसिक्यूटर जनरल मंज़ूर जजा, IG KP ज़ुल्फ़िकार हमीद ऐं चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह अदालत आॾो पेश थिया। चीफ सेक्रेटरी ऐं IG KP हल्फी बयान अदालत में जमा करायो। ॿुधणी दौरान अदालत में PTI जे 2022 ऐं 2024 जे एहतजाज जूं वीडियोज़ बि हलायूं वयूं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त इस्लामाबाद इंसाफ़ घुरण अची रहिया आहिनि। गोली न हलणु घुरिजे, कारकुन पुरमन तरीक़े सां इस्लामाबाद ईंदा, असां जमहूरियत ऐं मुल्क बचाइण लाइ निकिता आहियूं। बोनीर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गौर चयो त वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी आइन ऐं कानून मूजिबि स्ट्रीट मूवमेंट कंदो। पंजाब हुकूमत ख़ासि तौरु राणा सना लाइ रस्ते में रुकावटूं न विझे। हुकूमत सख़्तु क़दमनि बदिरां मुफ़हमत तरफ़ वधे। PTI बानी सां मुलाक़ात जी इजाज़त ॾिनी वञे।

विचावर में छिकताण सबब आलमी मार्केट में तेल की कीमतुनि में वधीक वाप थी वई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $108 फी बैरल ताईं पहुची वई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $103 ऐं मरबान क्रूड ऑयल की कीमत $120 फी बैरल थी वई।

ऐं गारे जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जो पाणी बंदि रहवासियुनि जो कराची ठटो रोड ते धरणो ट्रैफिक मुअतल एहतजाज कंदड़ ॻोठाणनि जो चवणो त बासरनि केडीए वाह मां ॻोठु नूर मोहम्मद तईम आरबपली जो अब्दुल्ला मीरपुर ऐं ॿियनि ॻोठनि जो पाणी बंदि करे छॾियो आहे नोटिस वठण जो मुतालबो असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरो धरणे वारे हंधि पहुची मुज़ाहिरनि सां ॻाल्हियूं कयूं ख़ातिरी बाद धरणो ख़तमु

0: कटने लगे हैं? अब हल है मोहेयर शैम्पू बाय सिग्नेचर ब्यूटी, 90% कुदरती जड़ी बूटियों और अज्जा से तैयार करता सल्फेट फ्री फॉर्मूला जो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये शैम्पू खुश्की कम करे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोर मिरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में चर्चे हो रहे हैं जनाब। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता है और न सिर्फ बताया जाता है बल्कि आप लोगों को उन तमाम चीजों से अवेयर भी किया जाता है जो चीजें शायद आप नहीं जानते। कई मतलब बहुत सारी खवातीन या फिर इस तरह के लोग मुझे मिल रहे होते हैं जिनका ये होता है कि भाई मुझे समझ नहीं आती कि उनको रिलेटेड स्किन से कुछ बेसिक सी नॉलेज भी नहीं होती। यानी कि बहुत से मासूम से लोग होते हैं, अगर उनसे कुछ भी पूछा जाए या फिर उनकी स्किन को देखा जाए तो ये अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले इंसान ने अपनी स्किन के साथ कितना गलत कर लिया है। क्योंकि जो भी आपको प्रोडक्ट बताए जाते हैं तो वो आप ठा करके लगा देते हैं स्किन के ऊपर और जब ये आदत आप लोगों की हो जाती है ना, पड़ जाती है ये आदत इंसान के अंदर कि कोई भी प्रोडक्ट बस लगाना है लगाना है लगाना है, तो ये आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि आपके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आपके चेहरे पर एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक्ने के निशानात आ जाते हैं और आप अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इन तमाम प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा सूटेबल सा प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए जो कि सेफ भी होना चाहिए हम इस्तेमाल करें तो भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं यहाँ पर चला चला के आप लोगों को बता रही होती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी ना। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम देखा जाए तो ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने तैयार किया है जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि जिनको स्किन की फुल नॉलेज होती है कि आपकी स्किन के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। तो अगर आप भी अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अपने चेहरे को खराब नहीं करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स है और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है और इसके साथ अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि इससे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि आप लोगों से ना लोग पूछेंगे भाई आप इतना महंगा महंगा फेशियल कहां से करा के आए हैं, इतनी महंगी ट्रीटमेंट आप कहां से ले रहे हैं। आप उनको बस इतना बताइएगा ये कमाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको इतने अच्छे रिजल्ट देंगे कि आप वाकई हैरान हो जाएंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप चाहे मर्द हंसराते खवातीन इस्तेमाल कीजिए। वैसे भी कितना खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जल्द की जो केयर होती है, ख्याल होता है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को

अगर आप भी टीस्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिएगा। और टीस्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको टीस्किन का फेस वॉश भी मिल जाएगा, तो वो भी आप साथ में परचेज कीजिएगा। दोनों चीजें साथ में लगाइए और दोनों चीजें साथ में लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी गाँव से आप हमारा शो सुन रहे हैं, ये चीज मैटर नहीं करती, बस ये चीज मैटर करती है कि वहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलनी चाहिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी क्रीम 12-55-970 एंड योर नंबर आहे 03-033-27-38-43-09 यानी बुड़ी 300 बटी है 70।

प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट आए सो तवा की लाजमी ट्राई करण घुर्जे से ट्राई करण में छाई वेंदो सो तां ट्राई करी दसो यकीन जाने भैया को बहुत मजे आ जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इस चीज का अंदाजा लगा ही लेंगे। अच्छा, तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं। तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद है, खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो जी आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताइए, अगर आपको फ्री में कहीं पर जाने का चांस मिल जाए तो आप बताएं आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम पैनल की जाने पाते हैं, तो आपके कुछ मैसेजेस हैं। तो हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है पटीदन खान अब्दुल मनान, वालेकुम अस्सलाम सदरा, मुझे भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेनी है मगर यहाँ पटीदन में नहीं मिल रही, प्लीज प्ले करना। अच्छा, तमाम गानों लिखियो है, और पटीदन में अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले तो जेको हाँ तमाम की नंबर बुधायो ना, और नंबर मां हिकड़े नंबर से तमाम राबतो करे वठो, आई उन्हें भाई साहब की चो तो भाई साहब असांजे पटीदन में भी तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अवेलेबल कराए, तो असान डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है। और महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम सदरा, मुस्कान का मतलब मुस्कुराने वाली, हंसने वाली और रज रज के हंसने वाली, हमेशा खुश रहे। सो स्वीट हदीका क्यानी का कोई वीआईपी डिस्को वाला गाना सुनाए। ओके जी, डन हो गया। और गुलाम नबी फ्राम दादू कहते सिद्रा क्या हाल है आपका, शो वेरी नाइस है, प्लीज प्ले फकीर अमीर बख्श। और ओके, मैं कोशिश क्या थी तमाम भाई जो जो पसंद या गाना इन्फॉर्मेशन उन्होंने हलायूं प्रोग्राम में। और पटीदन का अब्दुल मनान तमाम मुख्य हिकड़ो ही मैसेज कॉपी पेस्ट कयो आहे तकरीबन 4-5 मरतबा, सो थैंक यू सो मच तहांजी हिकई मैसेज जो लाइव मोहब्बत हुआ तवां जो तहां सने प्रोग्राम बुधो पया। और जी हमारे साथ हैं महबूब अली मोरो सिटी से, सिस्टर आपकी दुआ से मदीना पाक जाने को दिल कर रहा है, बस आपकी दुआ शामिल हो। जी जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, और बहुत शुक्रिया। और गुलाम नबी फ्राम दादू, सिद्रा जी टॉपिक में जाना चाहता हूँ लंदन, लेकिन सोचता हूँ अकेले जाकर क्या करूंगा, वहां पे जाइएगा घूमिएगा एंजॉय कीजिएगा और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, उनके अलावा चाचा खालिद हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा सिद्धू, की आयो खुश आयो सफा खुश बाशता बुधा की आयो चाचा, और कहते हैं अच्छा तमा काफी अच्छा, चलो गानों लिखियो आ, सही सही सही सही सही। और ये हमारे साथी, हाय सिस्टर आप कैसी हैं, ये मोहम्मद अली जोगी फ्रॉम रूहल फकीर, ओके ये गाना है या पता नहीं मुझे बात समझ नहीं आई, वेल आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ कहते हैं आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको, जी वालेकुम अस्सलाम आपको, ये मौजूद है, हाय हेलो हेलो रेडियो जोकी, हम जापान से आपका शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस वॉइस, योर नेम प्लीज, माई नेम जी एंड योर नेम, माई नेम इज सिद्रा मुस्कान, और जय भाई आपको वेलकम कहते अच्छा ये जय भाई क्या कहते हैं, जय भाई लिखते हैं वेरी नाइस जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और इस

highly recommend for anyone looking to enhance their super glow. Try enjoy beauty. Thanks. Okay, all. जी जी सब कुछ ओके है और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं तभी आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के कितने सारे फायदे मिल सकते हैं. और ये हमारे साथ ही जयपाल भाई कहते हैं कि माना के हुस्न की बादशाह हो तुम मगर हम सादगी में कमाल रखते हैं. जाए बुदा कसम दे कोई नगाला जा. अच्छा चले ये हमारे पास एक लिस्ट में जरा गाना मौजूद है तो मैं साथ साथ जरा आप लोगों को गाना भी सुनाती रहूंगी. और जयपाल भाई कहते हैं कि बड़ी तलब थी सनम को बेनकाब देखने की दुपट्टा जो गिरा कम वक्त जुल्फे दीवार बन गई. क्या बात है जी क्या बात है. वड्डे आए तो सी शायर.

Fazli here. Fazli ke diye assalamu alaikum ji. Walaikum assalam. Good afternoon. Okay ji, pyari Fazli ko welcome kehte ho. Isi ke saath saath Day Skin Beauty Cream kaun kaun istemal kar raha hai? Hatta mate kya baba. अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि लाइफ तो सही है लेकिन लाइफ खराब है. लाइफ को क्या हो गया भाई, लाइफ को ठीक कीजिए. वैसे लाइफ किसी की भी ठीक नहीं होती, उसको ठीक बनाना पड़ता है. अली गुलाम ग्रोही भाई हमारे साथ कहते हैं आपका शो कराची से एंजॉय कर रहा हूँ. सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच अली गुलाम ग्रोही. किशोर भाई कहते मतलब आज आप खामोश रहा. चाहते हो ताजी नेटवर्क है. और कहते हैं कि अगर इंसान का मकसद जगह ते वन्ये न तो पांजे खर्चे ते वन्ये. मुझे सोच या आए बाकी जी खबर कोने का. या सही गाल है. वैसे मुख्य भी लगे हुआ इन जमाने में इंसान केंजो भी घोरो न खड़े वो चाहे एक रुपए जो छो न उजे. खुद कहीं अपने लिए सब कुछ, क्योंकि बाद में फिर जो सुनने को मिलता है ना वो सुना नहीं जाता. तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है. अच्छा दर्दी दल कहती है टॉपिक में तुर्की. वैसे ये टॉपिक एक फन के हिसाब से लिया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे से आप जो इन टॉपिक को फॉलो करते जा रहे हैं सारे लोग. और यहाँ पर आप लोगों की पसंद के गाने भी हैं जी. ये इतना छोटा सा गाना था, जल्दी नहीं खत्म हो गया. चलें कोई बात नहीं, ये दूसरा गाना हमारी लिस्ट में है. और उसके

अच्छा चाचा तव्हां जो जेको टॉपिक वारो कमेंट हो ना वो ऊपर भॼी वियो सो तव्हां उनखे अगरि दोबारा कॉपी पेस्ट करे सघो था त महिरबानी कजो ठीकु आहे अब्दुल जी कैसर हमारे साथ मौजूद है खुश आमदीद कहते हैं और दर्द दिल कहती है मैं और अलीजा आपका शो सुन रही है साथ में बहुत शुक्रिया स्वीटी दोनों को वेलकम कहते हैं ऐसा कहते हैं कि शो में रश होती है तो मैं अंदर नहीं आता बाहर बैठ के आपका शो सुनता हूँ रोज ना करें भाई एक दो कॉमेंट तो आप कर दिया करें नहीं ज्यादा नहीं मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा कमेंट करते एक दो कर दिया करें मुझे पता हो कि भाई कौन कौन हमारे साथ मौजूद है।

अगर मगर चल रहा है इधर तो मुजाहिद मलिक हमारे साथ कहते हैं सिडो शो नाई से प्लीज आज ज़ीशान रोकड़ी का सॉन्ग सुना दें। बिल्कुल जी आपको सुनाते हैं। वैसे गाना चलाने में मुझे कोई मसला नहीं, गाना बस अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मेरे प्रोग्राम में सूट करे। और फरमाइश है जी लाजमी, वरना में चलें चलें जी बिल्कुल वैसे भी आपका गाना लगाएंगे, आपने अच्छी फरमाइश कर दी है। मोहम्मद पन्ना हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बहन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। मोहम्मद फारूक खोसो गोठ नसर दीन खोसो कश्मोर में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच भाईजान, आपको वेलकम हो गया। मोहम्मद मीरन जखनानी भाई हमें सुन रहे हैं जेका बाबा से, थैंक यू। रमजान भाई आ चुके हैं, रमजान भाई आपको भी वेलकम हो गया। और कहते हैं कि इंसान की खूबसूरती का ताल्लुक उसके जाहिर से नहीं बल्कि बातन से है, हर वो शख्स खूबसूरत है जो एक खूबसूरत और बाएखलाक दिल का मालिक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे ना जो क्रीमें नहीं लगा पाते तो चलेंगे आप डी स्किन फेस वॉश का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन का जब फेस वॉश यूज करेंगे ना तो ये भी बहुत अच्छा खासा आपके चेहरे पर जो है ना वो रिजल्ट दे जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तो बात ही कुछ और है बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो सोना सोना थी बनो, पानी खूबसूरती जो ख्याल रखो, हमेशा महकंदा रहो गुलाबन जिया।

0: दर्दे दिल कहती है कि बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही आता है फालतू के लोग चले जाते हैं. बिल्कुल या सही गाल कही आता हूँ. टॉपिक कहती है मैं तुर्की जाऊंगी. अच्छा, अच्छी बात है, तुर्की जाए. वैसे तुर्की जाना आसान है, इतना कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता मुझे लगता है. और ये हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे मुस्कान पूरी दुनिया आगे जा रही है और हम पाकिस्तानी 1980 में मतलब आगे बढ़ना हम चाहते ही नहीं है. सही गाल असा के वधणो ही ना है बाबा अगते असा 1980 में वेंदासीं. लेकिन मैं एक वो वाहिद इंसान हूँ जिसने मतलब कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया. मुझे पता नहीं क्यों ये ट्रेंड्स जो इन्हें अजीब से लगते हैं. मैं बस देखती हूँ, कहती हूँ भाई रावांदा मानू भी आ रही. अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया, इस चीज का गुरूर है. चीज बस मार्केट में आ जाए तो वाह, सब उसके पीछे पर जाते हैं. कुछ ठोई को रहता हूँ. चलिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिएगा, ठीक है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और यहाँ पर टाइम भी हुआ चाहता है जी, हम जरा शॉर्ट कमर्शियल.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंडी हन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: खुशखबरी हदन जे मुख्तलिफ बीमारियुनि में मुब्तला कंदरा ऐं पस गिरदाईअ में रहण वारनि शहरनि जे लाइ खुशखबरी हिक रोज़ा मुफ़्त मेडिकल कैंप जंहिंमें जिना हस्पताल कराचीअ जो मशहूर मारूफ़ हॾन जी बीमारियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद उमर मरीज़नि जो मुफ़्त मुआइनो कंदो। तारीख़ 19 सेप्टेम्बर छंछर जे ॾींहुं सुबुह 10 वॻे खां मंझंदि 3 वॻे ताईं हॾन जी बीमारियुनि में मुब्तला मरीज़ हॾन ऐं जोड़नि जे सूर चेल ऐं कुनर जो सूर हॾन जी टीबी ऐं कैंसर ॿारनि में हॾन जा मसाला शुगर जे मरीज़नि में ज़ख़्म जो न भरिजण ऐं हॾन में मुब्तला मरीज़नि जो स्पेशल चेकअप कयो वेंदो। त देर साजी हिन मुफ़्त मेडिकल कैंप मां फ़ाइदो हासिल करियो। एड्रेस डॉक्टर भागचंद शिफ़ा डी केयर क्लिनिक मेन रोड कंधरा राबतो 0383-71-2326। 44 सालनि जो तजुर्बो हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज जोड़नि जो सूर मैदे में जलन गैस बदहज़मी तेज़ाबियत गुर्दनि जी पथरी बवासीर बे औलादी वारनि जो किरण गंजपण फॉलेज ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 0326-22-00-440।
1: लास्ट लिंक में जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार के या फिर जो लोग स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आपका कोई ऐसा फेवरेट मतलब फेवरेट आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप जाना चाहें और अगर आपको कोई मुफ्त में वहाँ पर भेजे तो आप मुझे बताएं आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे क्योंकि फ्री में तो भाई बस होने चाहिए। ओके सो तव्हां टॉपिक ते ॻाल्हायो हुन खां अलावा पोस्ट खे तव्हां लाइक ऐं शेयर कंदा वञो ठीकु आहे। जेके जेके सोणा माण्हू असां सां गॾु फेसबुक ते मौजूदु आहिनि पोस्ट खे ज़रा लाइक ऐं शेयर कंदा हलो। हुन खां अलावा मां तव्हांखे ॿुधायां थी त अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था या वरी हा मार्केट में डी स्किन फेस वॉश बि अवेलेबल थी वियो आहे त डी स्किन फेस वॉश अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त हुन जे बारे में बि थोरी तव्हांखे नॉलेज हुजणु ज़रूरी आहे। सो डी स्किन फेस वॉश बि मार्केट में अवेलेबल आहे अगरि तव्हां क्रीम खां थोरो अवॉइड कंदा आहियो त तव्हां डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमालु करे सघो था। डी स्किन फेस वॉश जेको आहे न तमामु ज़बरदस्त क्वालिटी जो फेस वॉश आहे बाबा हर स्किन जे मथां सूट करण वारो प्रोडक्ट आहे ऐं हर स्किन खे सफ़ाई वी आई पी बणाए छॾींदो ऐं तव्हांजी स्किन अगरि अहिड़ी आहे बाबा कोई बि प्रोडक्ट जल्दी सां इज़ीली तव्हांजी स्किन ते जेको आहे मैच नाहे करे सघंदो त तव्हां डी स्किन फेस वॉश ट्राए करे ॾिसो। ऐं डी स्किन फेस वॉश जेको हाइलुरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे तव्हांजी स्किन जे अंदरि ताईं वेंदो तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट कंदो आहे तव्हांजी स्किन खे डीपली क्लीन कंदो आहे तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज बि रखंदो आहे। सो डी स्किन जो फेस वॉश तव्हां हाणे किथां बि वञी बसानी परचेज़ करे सघो था। ऐं डी स्किन जो फेस वॉश न मिले त पोइ तव्हांखे डायल करणो आहे जनाब 03। हाँ जी जनाब 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25-970 आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर आहिनि जिते तव्हां राबितो करे इज़ीली पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराए सघो था। सो डी स्किन फेस वॉश बि बाबा तव्हांजी ख़ूबसूरती खे चार चंड लॻाए छॾींदो। डी स्किन जो फेस वॉश तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसो ऐं तव्हां अगरि कोई बि सुठो फेस वॉश यूज़ करणु चाहियो था या फिर तव्हांखे कोई बि साबुण में या फेस वॉश में तव्हांखे ख़बर न पवंदी त बाबा कहिड़ी चीज़ असांजे स्किन जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हां डी स्किन फेस वॉश हिकु मरतबा ट्राए करे ॾिसो। मतिलबु एतिरो ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे सफ़ा तव्हांखे चवंदमि त बाबा हर हिकु चीज़ खे फिटी करे तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे ॾिसो यकीन जाने आपको बहुत अच्छा लॻेगा। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये इतनी प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जान जाएंगे कि वाह जी वाह गाल में दम वाहे। डी स्किन जो फेस वॉश ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॿई चीज़ूं गॾु लॻायो पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो तव्हां न रखंदा त केरु रखंदो छो त इहे तव्हांजी स्किन डिज़र्व करे थी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश न मिले त नंबर ते राबितो करे वठिजो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठिजो।

दिलवर ही नहीं जानता। ओके जी, शमन के गाने की फरमाइश थी तो मैंने सोचा चलो शमन का गाना आप लोगों को सुना देते हैं। और स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं अदा स्वीडन जो काफी चीजों मुखे वणंदियूं आहिनि सब का खास गाल होते 95% हॉस्पिटल फ्री इलाज कन था। अल्लाह वाह वाह। और कहते हैं सिस्टम अच्छा यानी कि सुठो सिस्टम आ दुनिया जो खूबसूरत तरीन कंट्री आहे सब का बेहतरीन तालीमी निजाम काफी कुछ आहे पो त सुठी गाला वनो वनो मुखे भी वठी वंजो गन। अच्छा मोहम्मद जवान कहते हैं हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम फ्री करवाना चाहते हैं उसके लिए कैसे राबता करें आपको जो नंबर बता रही हूँ ना उनके ऊपर राबता कीजिए ठीक है। और चाचा कहते हैं कि सिंधी में हाँ चाचा सिंधी में मां नंबर बुधाने सीखी वही है। अच्छा शुएब मंगी कहते हैं चौपे करबला जाना पसंद करेंगे क्या बात है जबरदस्त हो गया। और यासीन खंड हमारे साथ मौजूद है कहते हैं भाई को भी क्रीम फ्री। अच्छा कहते हैं भाई क्रीम कोई भी फ्री नहीं करेगा हाँ जब आप दुकान खोलेंगे तो सही बात है या फ्री क्यों देंगे भला तो फ्री देनी भी नहीं चाहिए थोड़ो बाबा पैसो खर्च कयो पाण ते थोड़ो पैसो लगायो जो तव्हांखे खबर पए त खूबसूरती जेका आहे न हासिल करण थोरी मुश्किल त आहे पर एतिरी बि मुश्किल आहे जेतिरो हुनखे मुश्किल तव्हां बणाए छॾियो आहे। अच्छा रमजान भाई तुम्हारा हेडो वेडो कॉमेंट करी छो आए थैंक यू वेरी मच। और मुगल उमरानी हमारे साथ मौजूद है आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं थैंक यू जी। और रमजान भाई तुम्हारा गाने की फरमाइश कही सदाई दुख वो गानों खड़ी आयो कहो दुख मिलो भला तुम्हें वक्त अली सियाल हमें सुन रहे हैं भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा फहीम भाई भी हमारे साथ हैं फहीम भाई एंजॉय करें प्रोग्राम बढ़िया जी एंजॉय करें। और चाचा खालिद कहते हैं हथ मथे क्यासी दी स्किन ब्यूटी क्रीम जोर डाडो आ बाबा डाडो।

अच्छा जुल्फकार अली कोसो हमारे साथ के थे। हाय सिद्रा मुस्कान जी, अरे नाम बोलो। अरे आपका नाम है जुल्फकार अली कोसो भाई, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा स्मार्ट भाई, उस गाने के जो शायर थे ना, वो मेरे ख्याल में वो नहीं है जिसने अभी एक होटल खोला है, कौन है, जागीरानी, इर्शाद जागीरानी। बिल्कुल वही थे।

बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां वठी अचो बाबा. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा वी आई पी गोरो चिटो बणाए छॾींदी. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते कोन थी मिले त बाबा नंबर छा लाइ ॿुधायां थी, नंबर ते राबितो करे वठो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए वठो. क्योंकि इस नाम खूबसूरती को मज़ीद निखारने के लिए अपनी रोज़मर्रा ब्यूटी के रूटीन में आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मज़ीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी. आपकी जल्द जो है ना वो इतनी प्यारी हो जाएगी कि लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे और आपसे पूछेंगे भाई बताएं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उन्हें बताइएगा जनाब ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का. तो अपने रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन को बनाए मजीद खूबसूरत, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है. तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, अपनी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए डी स्किन फेस वॉश का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन ब्यूटी सोप हो, दोनों चीजें नहीं बल्कि फेस वॉश हो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये दोनों चीजें मार्केट में अवेलेबल है. आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं. तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए.

¿Qué? अच्छा जयपाल भाई लिखते हैं कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। सलाम भाऊ। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाऊ। और कहते हैं और भाऊ ओके हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक। और गांवर खान हमारे साथ है खैरापुर मीरत से, आप हमारा शो सुन रहे हैं। शायद आपका नाम में थोड़ा गलत रीड करूँ तो उसके लिए माजरत करते हैं। और हमारे साथ जी माहीन बलोच कहती है, अच्छा आपने ओएसटी की फरमाइश कर दी, अगर आप मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपको ओएसटी हम सुन लेंगे, ठीक है। और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सिडो सॉन्ग मिला आपको मेरा? आपका गाना सच्ची बताऊं तो नहीं मिला मुझे। और जयपाल भाई कहते हैं कि भाऊ आपका टॉपिक पर क्या जवाब है, जरा हम भी तो सुने। मेरा जवाब तो बिल्कुल यही होगा, अगर फ्री में क्या मतलब, मैं तो खुद ही जाऊंगी। फ्री वाला तो सीन खैर हमारी जिंदगी में नहीं है। वैसे अगर चांस मिल जाए या फिर ऐसा कोई सीन हो जाए तो सबसे पहले सऊदी अरब आ जाऊंगे, क्योंकि मेरा एक फेवरेट मतलब ये है कि मैं जाऊं वहां पर, हर एक चीज देखूं, हर सारी चीज वहां पर विजिट करूं, इतनी सारी चीजें हैं वहां पर कि बस वहां जाए और खो जाए, कभी वापस ना आए, बस यो दिल चवंदो आए। और कहते हैं टॉपिक भाऊ ऑस्ट्रेलिया सिडनी सिटी जाएंगे जरूर। जी जी इंशाल्लाह जाइएगा, खुशी के साथ जाइएगा, खुशी के साथ मतलब हैप्पी होके जाइएगा और हमारी भाभी खुशी के साथ जाइएगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है।

पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दी जरा, और आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप वहाँ से जाएं तो आपके लिए आसानी हो जाए, बस परचेज करें और इस्तेमाल करना शुरू करें, ठीक है। और मोहम्मद समान कहते हैं, शमन भा खर्च करता जरूर इंदो बाकी या भी गाला है। साजिद अली भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। और ये रमजान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने शायरियां भेज दी हैं सारी सारी, इतनी सारी। और ये दो कहते हैं कि हाँ ना दा जड़े केर फ्री में घुमायण मोकले तो एड़ी कंट्री जो नालो वठे जेको सब खा महंगो हो जे। सब खा महंगो लंडन था वाला, एडो महंगो था छा बुधायो। अगर एड़ी गाला तो लंडन वनो, बाकी अगर दिल जी गाला तो पुर जारी ताजे दिल से ओडा हला वनो, खर्च जो टेंशन न वठो साहब वठो।

0: गया जी हमारे प्रोग्राम का, और ये हमारे साथ ही आइए।
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: कहीं भी सियासी जमायत वट इस्लामाबाद जा रस्ता बंद करण जो अख्तियार ना है। सूबन जा वड़ा वजीर एहतियाजन लाए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल न थियण के यकीनी बणायण। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पीटीआई जी लॉन्ग मार्च खिलाफ दाखिल दरख्वास्त ते फैसलो बुधाए छो। अदालत चयो आए त कें भी सरकारी मुलाजम के एहतजाज में शरीक थियण लाए मजबूर न कयो वञे। सूबाई हुकूमतन एहतजाजन लाए सरकारी वसीलन जो इस्तेमाल थियण न ॾियन। कें सियासी जमायत या अॻवाण खे बि शहरनि जे चुरपुर आॾो रंडक विझण जो इख़्तियार न आहे। इस्लामाबाद इंतिज़ामिया ऐं घरू वज़ारत चीफ सेक्रेटरी आईजीज़ खे हिदायत ते अमल खे यकीनी बणाइण जी हिदायत कई आहे।

0: जी पायलट के बचाइण वारी वीडियो जारी करे छॾी। अप्रैल में पेश आयल वाक्य जी 6 महीननि बाद वीडियो जारी कई वई। अमेरिकी फोर्सिस ईरान में किरियल F-15 जहाज जे हिकु पायलट खे कुझु कलाकनि ऐं ॿिए खे 3 ॾींहनि बाद रेस्क्यू कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: थाने चुरपुर में रुकावट विझण जो हक नाहे. इस्लामाबाद इंतजामिया ऐं घरू वज़ारत शहरनि जे आइनी हक़नि जो तहफ़ुज़ यकीनी बणाइनि. चीफ सेक्रेटरीज़ ऐं आई जीज़ अदालती हुकुमन ते हिदायतुनि ते अमल दरामद यकीनी बणाइनि. चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जी सरबराही में टे रुकनी बेंच दरख़्वास्त ते ॿुधणी हलाई. बेंच में जस्टिस आज़म खान ऐं जस्टिस आसिफ शामिल हुआ. एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद मलिक, प्रोसिक्यूटर जनरल मंज़ूर जजा, आई जी के पी ज़ुल्फ़िकार हमीद ऐं चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह अदालत आॾो पेश थिया. चीफ सेक्रेटरी ऐं आई जी के पी हल्फी बयान अदालत में जमा करायो. ॿुधणी दौरान अदालत में पीटीआई जे 2022 ऐं 2024 जे एहतजाज जूं वीडियोज़ बि हलायूं. वफ़ाक़ी आइनी अदालत सोहेल आफरीदी जे वॾे वज़ीर तौरु चूंड ख़िलाफ़ु शेर अफ़ज़ल मरवत जी दरख़्वास्त ॿुधण लाइ मंज़ूरु करे वरिती. वफ़ाक़ी आइनी अदालत वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया. मोहरत लाइ अटॉर्नी जनरल खे बि नोटिस जारी. शेर अफ़ज़ल मरवत चयो त गंडापुर रज़ाकराना तौरु इस्तीफ़ा न ॾिनी हुई. सज़ा याफ़्ता बानी पीटीआई जे चवण ते इस्तीफ़ा वरिती हुई. सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते सज़ा ॿुधायल. नाइल शख़्स को किरदारु अदा नथो करे सघे. बानी पीटीआई जॾहिं इस्तीफ़ा जूं हिदायतूं ॾिनियूं त हू नाइल हो. प्राक्सी ज़रिए रियासत हलाइण आइन तबाह करणु आहे. चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जी सरबराही में वफ़ाक़ी आइनी अदालत जी टे रुकनी बेंच शेर अफ़ज़ल मरवत जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी हलाई.

इस्लामाबाद जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत 26 नवंबर एहतजाज के समय पीटीआई जे 3 MNAs ए 12 MPs जा गिरफ्तारी वारंट जारी कर छा। उमर अयूब, इरफान सलीम, बाबर सलीम सवाती, मोहम्मद उस्मान, आसिफ महसूद, अजब गुल बेन जा गिरफ्तारी वारंट जारी। MPS शाहद, शेर अली अरबाब, जुबैर वजीर जहा भी गिरफ्तारी वारंट जारी क्या वा। पुलिस की इस्तदा जज अबुल हुसनात जुल्कर ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर भोर चवायत इस्लामाबाद इंसाफ घुरण अचूं था गोली न हलणु घुर्जे कारकुन पुरमन तरीक़े सां इस्लामाबाद ईंदा असां जमहूरियत ऐं मुल्क बचाइण लाइ निकिता आहियूं मोनीर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर भोर चयो त वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी आइन ऐं कानून मूजिबि स्ट्रीट मूवमेंट कंदो पंजाब हुकूमत ख़ासि तौरु राणा सना लाइ रस्ते में रुकावट न विझे हुकूमत सख़्तु क़दमनि बदिरां मुफ़ाहिमत तरफ़ वधे पीटीआई बानी सां मुलाक़ात जी इजाज़त ॾिनी वञे

0: पेट्रोलियम लेवी घटायूं हा त अमीर माण्हू बि फ़ाइदो हासिल कनि हा, सब्सिडी रुगो ग़रीबनि लाइ आहे। कोशिशि करे रहिया आहियूं त पेट्रोल पंप्स ते लाइनूं न लॻनि। मोटर साइकिल वारनि खे हफ़्ते में हिकु भेरो फ्यूल सब्सिडी मिलंदी। 800 CC गाॾियुनि वारनि खां हर 10 ॾींहनि बाद हिकु भेरो पेट्रोल ते सब्सिडी मिलंदी। मोटर साइकिल ते 500 रुपया ऐं नंढनि गाॾियुनि ते 1000 रुपया सब्सिडी ॾिनी वेंदी। पेट्रोलियम वज़ीर अली परवेज़ मलिक, अता तरड़ ऐं शिज़ा फातिमा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिज़ा फातिमा चयो त स्कीम खे ॿिनि हिसनि में विरिहायो वियो आहे। पहिरें हिसे में रजिस्टर्ड थियणो पवंदो। सारिफ खे पंहिंजे क़ौमी सुञाणप कार्ड ते रजिस्टर्ड सिम सां मोटर साइकिल या गाॾी जी रजिस्ट्रेशन जी तारीख़ लिखी 9771 ते मोकिलणो पवंदो। इस्लामाबाद में अॼु राति खां स्कीम लागू हूंदी। 16 ऐं 17 सेप्टेम्बर जी राति 12 वॻे खां सॼे मुल्क में स्कीम लागू हूंदी।
1: पाकिस्तान के फैसला करने वाले दूरबीने लगाकर देख रहे हैं कि कराची वालों के मसले का हल होने जा रहा है। उनको इंतजामी यूनिट उनको सूबा मिलने जा रहा है। इस पे कराची वालों का रिएक्शन क्या, जब दूरबीन लगाकर देखते हैं तो तुम सो रहे हो। आज जो मुल्क में गुफ्तगू हो रही है उसमें शहर को रोड पर होना चाहिए था, बगैर किसी कानून को हाथ में लिए बगैर। जो तुम्हारे भी दुश्मन है और जिनकी आपस में दुश्मनियां थी, एक दूसरों के कबीले, पूरे पूरे कबीलों का कत्लेआम हुआ हुआ है, उन्होंने अपनी दुश्मनियां खत्म करके तुम्हारे खिलाफ सब आ रहे हैं, लेकिन आज तुम सो रहे हो। आज तुम्हारी नस्लों का फैसला होने जा रहा है कि 7 नस्लें या तो कटेंगी या फिर जिंदा रहेंगी। हम अपने घरों में सो रहे हैं। यह खतरनाक टाइम है, हमें उठना पड़ेगा। हमें वोट मत देना। लानत भेजता हूं ऐसे वोट पर जो मेरे बच्चों को गटर में गिराए। मैं लानत भेजता हूं ऐसी वफाकी वजारत पे कि मेरे बच्चों की, मेरी नस्लों की जिंदगी गिरवी रखी हो किसी जागीरदार वडेरे सरमायादारों के हाथों में।
0: तव्हांखे पंहिंजो सुबुह मिलण वारो आहे ऐं तव्हां घरनि में सुता पिया आहियो। एम क्यू मगवान मुस्तफ़ा कमाल जी कराची में कराची वासियुनि खे मयार कोरंगी में जलसे खे ख़िताब कंदे मुस्तफ़ा कमाल चयो त फ़ैसिलो कंदड़ दूरबीन लॻाए वेठा आहिनि त सुबुह मिलण ते कराची वारनि जो रदि अमल छा आहे। पर तव्हां घरनि में सुता पिया आहियो, तव्हांखे हिन वक़्तु रोडनि ते हुजणु घुरिजे। हा, तव्हांजा दुश्मन पंहिंजा खूनी कबीलाई जहिड़ा विसारे मुतद थी चुका आहिनि, पर तव्हां सुता पिया आहियो। तव्हां बि रस्तनि ते निकिरी अचो। मुस्तफ़ा कमाल चयो त तव्हां असांखे वोट भली न ॾियो। अहिड़े वोट ते लानत थो विझां जेको मुंहिंजे शहरनि खे हक़ु नथो ॾियारे सघे। अहिड़े वफ़ाक़ी वज़ारत ते लानत थो विझां जेका असांजे हक़नि खे सरमाएदारनि वटि गिरवी रखे थी। हाणे मुंहिंजे चवण ते बि को केस मुक़ररु न थींदो आहे। केस मुक़ररु करण जी पॉलिसी वेबसाइट ते मौजूदु आहे। हाणे केस तकिड़ो ॿुधण लाइ शाम जो बि अदालती बेंच वेंदी। चीफ जस्टिस ए आर अफरीदी जो फुल कोर्ट इजलास खे ख़िताब। चीफ जस्टिस ए आर अफरीदी चयो त केर चवे थो त जज 3 महीना मोकिलूं कंदा आहिनि, जज 3 महीननि जे अरसे अंदरि 1 महीनो मोकिल कंदा आहिनि।

विच ओवर में छिकताण सबबि आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में वधीक वाध थी वई। ब्रेंट क्रूड ऑयल जी क़ीमत $108 पी बैरल ताईं पहुची वई। WTI क्रूड ऑयल जी क़ीमत $103 ऐं मरबान क्रूड ऑयल जी क़ीमत $120 पी बैरल थी वई।

अजुमान में इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त मुलतवी कर वो इो एक मौको हो जो ईरान ओमान फराहम किया हो तवक हुई तो खेते जहा मुल्क मौके की अहमियत के समझंदा ए कदर कंदा यो एक मुनासिब मौको हो तो खेते जहा मुल्क परदेही धुरन की मुदाखलत का परे रहंदा पान में गालू कंदा। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई की हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग गुजरियल रात ओमान के परदेही वजीर इजलास मुलतवी करण जो ऐलान किया हो अजा तीन इजलास की नई तारीख जो ऐलान न किया वो है। बहरेन ऐलान किया हो तो ईरान की मौजूदगी सबब इजलास में शिरकत न कंदो। अगूणो सूबाई वजीर हाजी हसन अली चानियो खिपरो वारी राजगाह का अगवा संदस गार्डन जो चवण है तो जवाबदार एक मोटरसाइकिल और बिन कार में सवार हुआ असा के एक कमरे में बंद करण बाद जवाबदार हाजी हसन अली चानियो के तशद्दुद कंदे खणी विया। जवाबदारन के सुजाणू था हाजी हसन अली चानियो जो बाग ठीके ते खयो हो जरन मुजब जवाबदारन हाजी हसन अली चानियो के वारसन से राबतो कयो आहे। एस एच ओ खिपरो जो चवण है तो जवाबदारन जो तालुक जरदारी बिरादरी से है सदन वेझो पची वया आयो पैसों की डेती लेती तो हाजी हसन अली चानियो के अगवा किया वो है। पी टी आई एस एन के सदर हलीम आदिल शेख पारा हाजी हसन अली चानियो के अगवा की मज़म्मत खेस फौरी तौर बाजियाब कराने जो मुतालबो

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। 1

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: डाडो सुठो
3: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अपोजिशन पारां सख्त एहतजाज करे नारेबाजी कई वई आहे. सिंध असेंबली जो इजलास जारी हो जिते मुख़्तलिफ़ बिल पास किया विया आहिनि. इजलास दौरान अपोजिशन पारां सख़्त नारेबाज़ी करे गोड़ करे एहतजाज रिकॉर्ड करायो वियो आहे.

0: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: आप सुन रहे हैं
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

वेलकम बैक मौजूद सामाइन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM मातली, GAFM मेरप्रकाश, GAFM मटियारी, GAFM सकरंड, GAFM मोरो, GAFM मेहरापुर, GAFM सखर एंड GAFM लाड़काने जो गदिल आवाज। रहे अवांजो पंहिंजो शो जेको मां ॿुधो पिया, ऐं उन शो जो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम। अवांजो मेज़बान अवांजो आरजे अवांजो पंहिंजो यूनुस बकारी अवां सां मुखातिब आहे। जेकॾहिं अवां शामिल थियण चाहियो था अॼोके शो में, त टाइप करियो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। अॼु असां ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो। ओके जनाब, नंढड़ो अजब अली असांखे ॿुधे पियो, नंढड़ो अजब अली ऐं नंढड़े अजब अली ख़ासकेली साहिब, तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी लख थो रहवांजा ऐं अवां असांखे जॉइन कयो आहे। अवांजो मोहबतूं ऐं भलीकार चवंदासीं तव्हांखे।

नज़ीर असांखे ज्वाइन कयो आहे, तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी। नज़र मोहम्मद जत असांखे ॿुधे पियो, अव्हांजी महिरबानी। नंढड़ो मोहम्मद हसन जत असांखे ॿुधे थो, अव्हांजूं मोहबतूं। ॻोठ मोहम्मद रहीम जत खां थैंक यू भलीकार।

जीवन समीन साथ ऐं आवाज़ जे साथ में तव्हां जॾहिं टाइप कयो त एम टी आई लिखजो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो।

ಈ ಲಶಾರಿ ಸಾಬಾ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರಂ ಖಾಂಬುದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲಿಕಾರ್ जीवन समय नवा केड़े शहर गोठ वायण वस्ती का बुध पे जै जै शहर इलाके वायण वस्ती का बुध पे बुधाई सो तो मौसम की आहे गर्मी आहे या मौसम नॉर्मल आहे चकाने जो केतरन इलाकन में गर्मी की शिद्दत है केतरा ही अड़ा इलाकन जिते बरसात वसी है जी स्पेशली कराची वन इलाकन ठटे सुजावल बदीन थरपारकर इलाकन में बरसात वी है।

सजण सांगी जी वांड मिठी मां गुलाब गुल असंगे बदे पियो गुलाब गुल वेलकम चंदासी वांगे भलीकार थैंक यू जी जना मेहरापुर का इंतजार हुसैन यू मैसेज पतो वेलकम चंदासी इंतजार भलीकार वेलकम

जी जनाब, फकीर आमिर झिंझी असांखे थरपारकर में नोहटे जी नगरी में ॿुधे पियो। ऐं फकीर आमिर झिंझी ॿुधाए थो त उते हींअर बरसाति वसे पई ऐं माहौल ॾाढो ज़बरदस्त आहे, ॾाढो ख़ुशबूदार माहौल थी वियो आहे ऐं थर खे हुई बरसाति जी ज़रूरत आहे। सो फकीर आमिर झिंझी साहिब, तव्हां ॿुधो था तव्हांजा वॾा वॾा मोहबतूं। फौज़िया जो गानो गॾिजी ॿुधूं था ब्रेक खां पोइ, बाक़ी बिना ब्रेक ॻाल्हियूं कंदासीं।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर दी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
7: GAFM 88
1: नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत और जवाबित लागू हैं
4: मातली आसपास जी अवाम अलै खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12 सैकड़ो ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसिन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली

वेलकम बैक मौजूद सामेन जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जी पेशकश हमारे पंजो शो है सिंधड़ी जी शाम है सिंधड़ी जी शाम में हमारे मेजबान हमारे पंजो यूनुस बकारी हम सण मुखातिब है जिन जिन इलाइकन वाहणन वस्तेन वस्तेन में असन जो आवाज गुंजार करे पहुंचे पे सबनी के भलीकार था चऊं जो मोहब्बत इन जो तहां से सगद गद शामिल आयो जी जनाब अस के जामोट फार्म का ज्वाइन कयो है मुश्ताक अली लाशारी बाबू समूह बाबू लाशारी रजब समूह अवज तमाम घनी मेहरबानी अवा सभी गजी शो बुध पे शो तक वणो है मौसम की मुनासिबत से तक प्रोग्राम सुठो तो लगे अवा तारीफ एतरी घनी कई है असि उन तारीफ ते अवजे तौराए ती भी यही चई सकता अवज मोहब्बत अवज मोहब्बत में यकीन इन शो में अव पैं दफो शामिल थे आयो ही अवजी ब्यूट्यूब गड गड मैसेज पौतो है असि अवा के वेलकम भलीकार था चौं बदीन का बखर सिराणी का सखर कींजर का कारूंजर केटी बंदर का कश्मोर इंटरनेट थ्रू लाड़काने का लाहौर मटियारी का मेहरापुर मेहरापुर का मोरो सकरण का साहिवाल तई जिन जिन लाइकन तई असो आवाज कनाए तो वे सी सिंध के भलारी भूह वतन अजीज पाकिस्तान के मिट्टी से मोहब्बती मानन के एक दफो बेहर सिक भर सलाम जैसे अव बुधा जो शो तो शो में शामिल थे बस ही अस आखिरी दह मिनटन जहाँ मैसेज शामिल कदी उन कॉल्स जो प्रोग्राम शुरू कदी कॉल नंबर तक जरूर बुधाइंदी फिलहाल अवैं मैसेज टाइप कर वो तकड़ो तकड़ो MTI लिखो थोड़ा स्पेस दिए गोठ शहर नालो लिखी नालो लिखो 88 81 881 मैसेज डे मोको कौसर बुरडे साहब जो सिटू आन तो तोसा जी रूह जहा राबता वधंदा व्या तोसा जी रूह जहा राबता वधंदा व्या ती तुझा जाबता वधंदा व्या तोसा जी रूह जहा राबता वधंदा व्या ती तुझा जाबता वधंदा व्या नाओ जिनजो बुधी मुझो अंदर थे सड़ियो हाँ नाओ जिनजो बुधी मुझो अंदर थे सड़ियो तिन सा तुझा वास्ता वधंदा व्या तिन सा तुझा वास्ता वधंदा व्या जी जनाब साथ है आवाज साथ है एकड़ो जबरदस्त ट्रैक है जेकी बुधी ता वठौ है उन ब्रेक का पे वापस अची एवा सा गालियु कंदासी आई फिलहाल ही जबरदस्त ट्रैक है बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापसी हुंदी ते करे केदा न वंजो बस तमाजे लाई ट्रैक सनम मारवी जो आवाज प्ले के पे बुधी वठो भला

जी जना वेलकम बलिकार खुशामदीद जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के स्टूडियोज में अवां शो बुधो पिया सिंधड़ी जी शाम आई अवां जो आरजे अवां मेज़बान तासण मुखातिब है यूनुस बकारी। सो दोस्तों मेहरबान कदरदानो साज ए आवाज के साथ में यकीन असो साथ हमेशा सते वगे तई हों पर असा वट जी मेल ही मत मुखातिब आया असाजी जै स्टूडियोज में लाइव आया वो स्टूडियो है मातली जी एफ एम 88.90.4 जो उन स्टूडियो के बारा शदीद बरसात जारी थी वही है उन बरसात के महसूस कदे यकीन मौसम के भी इंजॉय पे क्यों उन मुखातिब आयो। सो पाण ट्रैक बुधी था वो उन न्यूज ब्रेक हों न्यूज ब्रेक असाइंदी तुम कॉल्स वह कदन वो साथ असो हों जबरदस्त जारी हो सारी नंढड़े ब्रेक का करूं यूनिस बकारी सरमंद सिंधी साहब की सदाउन के हवाओं में गुंजाईंदे वो।

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: नारेबाजी कंदे ऐवान मां वॉकआउट. सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमण चयो आहे त MQM अॼु बि पंहिंजी पुराणी रवायत बरकरार रखी. MQM वारनि ॻाल्हि ॿुधण खां सवाइ गोड़ कयो ऐं ऐवान मां हलिया विया. मुतहदा वारा मकानी चूंडुनि खां बि भॼी विया हुआ. तरमीम इन लाइ कई वई त चूंडू थियण ताईं पुराणा माण्हू ई निज़ाम हलाइनि. खालिद मकबूर सिद्दीकी मुस्तफ़ा कमाल ते बि इल्ज़ाम मड़िया हुआ. अॼु ॿई वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो आहिनि. उन्हनि जा हिक ॿिए ख़िलाफ़ बयान ग़लति आहिनि त उहे माफ़ी घुरनि.

कहीं भी सियासी जमात वट इस्लामाबाद जा रस्ता बंद करण जो अख्तियार ना सूबन जा वडा वजीर एहतजाजन लाए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल न थियण के यकीनी बनायन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई की लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त ते फैसलो बुधाए छो। अदालत है कहीं भी सरकारी मुलाजिम के एहतजाज में शरीक थियण लाए मजबूर न कयो वञे। सूबाई हुकूमतू एहतजाजन लाए सरकारी वसीलन जो इस्तेमाल भी थियण न दियन। कहीं सियासी जमात या अगवाण के भी शहर की चुरपुरालो रंडक विझण जो भी अख्तियार ना। इस्लामाबाद इंतजामिया घरू वजारत चीफ सेक्रेटरी आईजीज के हिदायतों अमल के यकीनी बनाने की हिदायत करी छी।

व्याज जी शरह 11.5% ते बरकरार। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जो ऐलान करे छो। स्टेट बैंक मौजूद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी व्याज जी शरह बरकरार रखने जो फैसलो कयो। इंदड़ 3 महीन लाइ व्याज जी शरह 11.5% बरकरार रहंदी।

0: सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं जारी, नव दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब मस्तोंग में दहशतगर्द
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी जी
1: जी
0: जी जी जी मेहरबानी मेहरबानी लख थोरा साईं लख थोरा तां जा खुश जो जी दिसना सी हाने कल ते केर हालो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केर साहब है किथा का
2: नवाब सिंह बलारे का रहमान अली शंभाणी
0: रहमान अली शंभाणी साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक है अलहमदुल्ला दुआ लगी पई है रहमान अली शंभाणी साहब मुझे ख्याल में तांजी पहरो दफो कॉल लगी है मुझे शो में
2: जी जी जी जी बिल्कुल
0: बिल्कुल हम असा के भी केर पे बुदे
2: हां इलाही दोस्तान को जे संगदार बुदन था या मामन बचल शंभाणिया मंजूर फलफो तो हुसैन भाई ख्याला
0: जी जी
2: सिकंदर चाय इनके
0: अलावा वालेकुम असलम मोहबतू मिठा मानू मोहबतू डिस्नासी कॉल ते केरा है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम शायद कॉल ड्रॉप थी हुई है वधी कॉल वठने की कोशिश कंदासी हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब अच्छा आवाज न पियो अचे रिसनासी कॉल ते आवाज अचे तो हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम
0: केर साहब है किथा का
3: इतर नगर का बाबर चांडिया साहब जो करा
0: जी चांडिया साहब खुश आयो ठीक आयो
3: अल्हम्दुलिल्लाह सही काम दा शायद जो खैरत ते सही
0: आ अल्हम्दुलिल्लाह आवाज जी दुआ लगी पे ता सके भी केर पे बुदे
3: मुझा दोस्तन कुछ मुझा भाईरन समीर चांडियो मंताल चांडियो बशीर चांडियो जुल्फकार चांडियो
0: मेहरबानी लख थोरा साईं खुश हुजो ॾिसंदा हाणे कल ते केरु हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केर साहब ई किथां का जी बदरदीन चांडियो साहब वेलकम था चऊं तव्हांखे तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे ख़ासि दोस्त आहिनि ख़ासि दोस्तनि जा नाला ॿुधायो जी जी जी जी जी जी जी वालेकुम असलम वालेकुम असलम महिरबानी मज़ीस ख़ातिन हज़रात हिकिड़ो नंढो ब्रेक आहे ताहिर मिठू जो आवाज़ तव्हांजे लाइ गुंजे पियो हुनखे ॿुधी था वठूं एॾो हुन शर्माए तूं हुन गाने जो उनवान आहे अचो तोखे जी ॿुधूं बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं ब्रेक खां पोइ ऐं असांजो असां अधु कलाक जो साथ अञा ॿुधो छो त प्रोग्राम आहे जारी उसारी हिकिड़े नंढे ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवां जो पंहिंजी यूनिट्स बकारी केॾनि वंश

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराय तो जवाबित लागू हैं।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जी जना वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी FM 88 रेडियो नेटवर्क के दी पेशकश सिंधड़ी जी शाम है सिंधड़ी शाम जो सलाम यूनिस बकारी अवसर मुखातिब है अवे पेंजो आर जे अवसर दिल जो गाली हलन पेयो सो जनाब अवे के कॉल करन चाहो था शामिल थन चाहो था तो जल्दी से नंबर डायल करे वठो नंबर है असन जो 0334352578 इन नंबर ते ता के कॉल ए कॉल ते दिसना से केर हुंदो अस सगर उनन जी कॉल कंदा सी शामिल हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम भाई शान खुश हो खैर
0: साईं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह केर साहब है किथा का
1: जी जी दिल अंदर दरिया
0: मन अंदर वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त साईं
1: साईं
0: नाज फकीर मोहम्मद जलालानी आरजे रेडियो नेटवर्क भली कार वेलकम चौंदासी तव्हांखे वेलकम साईं वेलकम तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे
1: साईं मुंहिंजा साथी आहिनि रोस्तम पावर ऐं उन सां गॾु गुलाम रहीम बलोच चोहन कुमार कोहली कुर्बान ख़ास कैली रोशन अली पावर या जेके बि सिंध जा साथी मूंखे ॿुधनि था अलाह साईं सभिनि खे शाद आबाद ऐं सलामत रखे
0: महिरबानी महिरबानी थैंक यू साईं ख़ुशि हुजो आबाद हुजो महिरबानी ओके जनाब ही आहे जी FM 88 रेडियो नेटवर्क ऐं अवां सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं मोहबत जूं प्यार जूं पंहिंजा पियूं अवां बि जेकर शामिल थियण चाहियो था हिन
2: पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
5: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती
6: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है अब कुछ नहीं हो सकता अब हम कभी नहीं मिलेंगे मुझे माफ कर देना

शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: गुलगरा लाए खुशखबरी चाहियो था अवां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: डाडू सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: वेलकम बैक मज़ी सामीन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क हाँ जो यूनिस बकारी मुखातिब है तुम तमाम घड़ी मोहब्बत भलीकार जी मेहरबानी ज्वाइन कर चुका उनके आखिरी लम्हात में भलीकार चाहिए आखिरी दह बारह मिनटन के साथ में अगर केर साथ में पाई उन कॉल अटेंड क्यों था हलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब है किथा का आवाज अचे पो हलो अच्छा जी आवाज कंधो अचे शायद नेटवर्क इशू हों दिसंदी हाँ कॉल से केर हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब आवाज अचे तो शायद आवाज कंधो अचे तांके बलिकार चवंदासीं सिंधड़ी शाम जे में आए अवां के सिक भरो सलाम सो दोस्तों मेहरबानो के दर्दानो भेनरो ए भाइरो अवां जे शहर वायण बस्ती बस्ती में सिंग बुद्ध था ताजो मोहब्बत है ने अवां के चंदासी भलीकार खुश जो आबाद जो अब्दुर्रहमान लगारी लुटको मोरी के बुद्ध तो अवां मेहरबानी ए मिठा खान लगारी तालिब से लगारी अवां जो तमाम घणी मेहरबानी वडा वडा वाजा जो अवां सा के जॉइन कयो आ कॉल ते दिसनासी त अगर केर आ ए कॉल ते अटेंड कियो था हेलो अस्सलाम वालेकुम अजीज सोलंगी साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला
1: अदा
0: सब खैर लगो पे खुश आयो जोर अलहमदुल्ला दुआ लगी पई है तुम सा केर पे बुधे

0: बरसाति तमामु सुठी पइजी वई आहे।
1: तमामु घणी महिरबानी, मोहबतूं अवां जे लाइ दुआगू आहियूं साईं।
0: साईं तमामु तव्हांजी मोहबत प्यार ऐं वरी तव्हांजे आशीर्वाद जो प्यारो मिठड़ो आहे।

0: मोहब्बत ॿुधूं पिया।
1: महिरबानी महिरबानी, अवां जी मोहब्बत अवां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे साईं?
0: बिल्कुल मुंहिंजा दोस्त आहिनि, रामचंद कुमार मकवाणो आहे, दिलीप कुमार आहे, मोहम्मद सिद्दीक पारो आहे, ऐं मुंहिंजो नंढो भाइटो अली अहमद तव्हांखे ॿुधे पियो ऐं दुआ सलाम ॾे पियो।
1: किरोड़े कुर्ब सभिनी सभिनी जूं महिरबानियूं ऐं अली अहमद खे बि वालेकुम सलाम। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ओके जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ में आख़िर लमात्रा वधण खां पहिरीं हिकिड़ो मिठड़ो आवाज़ हवाउनि में गुंजे थो, उन आवाज़ खे अमी बि कनाए सघो था, ॿुधी सघो था। हीउ आवाज़ जलाल चांडीअ जो आहे, जेको सदाबहार आवाज़ आहे, जॾहिं बि गूंजंदो आहे सॼी सिंध में, मोहबतुनि जो आवाज़ जेतोणीकि असांजी सॼी सिंध, सॼी दुनिया, सॼे पाकिस्तान में जिते जिते बि हीउ आवाज़ ॿुधो वियो या गूंजियो, उते मोहबतुनि जा मींहं वठा। सो अवां सभिनी खे भलीकार चवंदा, हिकिड़ी कॉल अटेंड कंदासीं। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहिब ऐं किथां खां? बशीर अहमद चांडू साहब, वेलकम चवंदासीं तव्हांखे, भली कार महिरबानी। असां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे? जी जी जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम, ख़ुशि हुजो साईं, महिरबानी। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर।
1: जी केरु साहब ऐं किथां खां? जी चांडिया साहब, ॿियो तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे?
2: मुंहिंजा दोस्त आहिनि कुझु भाइरनि, मुस्ताज चांडियो, जूनूस चांडियो,
1: जी जी
2: चांडियो, बशीर चांडियो।
1: महिरबानी महिरबानी साईं, लख थोरा ॾिसंदासीं। हाणे काल ते केरु? हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
1: जी केरु साहब ऐं किथां खां? जी छा हाल है कुर्बान खासकली साहब, खुश आयो?
3: अलाह जा इहसान, ॿाहिरि दुआऊं, बरसाती रुत जो सफ़र ऐं चारि पासे गजगोर जारी, पागलनि जो रवां दवा, तव्हांजो आवाज़ मिठड़ो ॿुधूं था, ॾाढी ख़ुशी थिए थी, खेवनि जा चलका बि आवाज़ त ॾाढो मासूर थी वियो आहे, करोड़ ॾाढो मज़ो ॾियो आहे।
1: किरोड़े कुर्ब किरोड़े कुर्ब, ख़ुशि हुजो। न न न, नवे वॻे ताईं न, बसि मुंहिंजो हाणे वञण जो टाइम थी वियो
3: आहे।
1: बसि पोइ हाणे वक़्त वक़्त खां वक़्त ताईं जीअणो आहे, हलणो आहे, रहणो आहे, रोज़ी रोटी एसी ताईं हुई।
3: बिल्कुलु इहो सही ॻाल्हि आहे, पोइ वेंदे वेंदे को बरसाती कलाम थी वञे,
1: हाज़िर हाज़िर हाज़िर हाज़िर साईं, हाज़िर साईं। नाला वठी वठो जल्दी जल्दी, टाइम तमामु घटि आहे। ठीकु आहे ठीकु आहे, महिरबानी सर, महिरबानी। जी जनाब, ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम, बल्कि कॉल ड्रॉप थी वई आहे। जलाल चांडियू साहब जो आवाज़ त पुॼाणी थी पहुची वियो आहे, ऐं हाणे आवाज़ आहे। कहिड़ी लॻे थी कस जानी मूंखे ॾस, ऐं इहो आवाज़ अमीब सुञाणंदा हूंदव यकीननि, छाकाणि जो जग मशहूर आवाज़ आहे। फ़ाइज़ा अली जो आवाज़ आख़िरी ट्रैक हूंदो जेकी शो में, ऐं ॾिसंदासीं त असां गॾु कॉल ते आख़िरी लमात में केरु गॾु। जी जनाब, हलो, अस्सलाम वालेकुम, बल्कि कॉल ड्रॉप थी वई आहे शायदि। सो कॉल ड्रॉप थी वई त पोइ पाण छा कंदासीं, हिकिड़ो दफ़ो कॉल खे अटेंड करण जी कोशिशि कयूं था। हलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं केरु साहब ऐं किथां खां? अयाज़ अली भुट्टो साहब खे भली कार चवंदासीं, लाड़काणे जे थधियुनि ऐं सुठियुनि हवाउनि मां असांखे यादि कयो। अयाज़ अली भुट्टो साहब, तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? अलहमदुलिल्ला, तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जी
3: भुट्टो,
1: जी जी
3: भुट्टो,
1: जी जी
3: भुट्टो,
1: जी जी
3: दोस्त लाड़काणे में,
1: जी जी
3: अब्दुल गनी अबड़ो, हालिम अबड़ो,
1: जी जी
3: मजीद शर।
1: किरोड़े कुर्ब साईं, सभिनी दोस्तनि जूं महिरबानी, अवां जूं स्पेशल महिरबानी, थैंक यू थैंक यू। हाणे ॾिसां कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब ऐं किथां खां?
4: अजमेर जी जी
1: शुक्र अलहमदुल्ला अवी दुआ लॻी पई तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी जी वालेकुम असलाम ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम असलाम
1: जी केरु साहिब ऐं किथां खां
4: आख़िरी लमात में इरफान अली थेबो गुलाबी संगत ख़बर बि तालका सालेपट खां
1: जी इरफान अली थेबो साहिब लख थोरा तव्हांजा देरि सां पर ख़ैर सां तव्हां असांखे जॉइन कयो अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
4: सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं हुन खां पोइ राय सुमरो मंता सुमरो हाफ़िज़ गुलाम अहमद सांबल हुसैन बचिस्तर भसन शंबानी नज़ीर मंगीर लुकमान चाचर अब्दुला भंगवार जेके तव्हां सभु था सभिनी खे इरफान अली थेबो बारहं खां सलाम
1: वालेकुम असलाम कहिड़ो ॾींहुं कुरब ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम साईं
1: साईं केरु साहिब ऐं किथां खां
5: साईं मिठा माण्हू रांझन कोरी मीरपुर खां कोरी ॻोठ
1: छा हाल आहे रांझन साईं ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
5: अलाह पाक जो शुक्र आहे साईं तव्हां ॿुधायो
1: महिरबानी अलहमदुल्ला अव्हांजी दुआ लॻी पई आहे तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
5: मूं सां गॾु ॿुधे पियो डॉक्टर फरहान डॉक्टर लालचंद
1: जी जी
5: ऐं हिकिड़ो फराज़ ऐं ॿियो मुंहिंजो भेणायो लाल मोहम्मद कोरी
1: जी जी
5: ऐं न्याज़ जूणे जो अली जूणे जो इमाम बख़्श जूणे जो दानी जूणे जो
1: जी महिरबानी सर महिरबानी लख थोरा ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम ओके जी कॉल ड्रॉप थी वई आहे ऐं असां हुन खां अॻे जो इशारो अचे यूनुस बकारी हलियो वञे साज़ ऐं आवाज़ ऐं साथ जी अॼोकी पुॼाणी थिए थी हयाती रही मेलो मचंदो वरी बवां सां मुलाक़ात थींदी सो मौज़िज़ सामईन यकीनन प्यारे पंजाबी जे रंगन खे ख़ूबसूरत हवाउनि में विखेरींदे अव्हांजो यूनुस बकारी वञणु चाहे थो जब भी चाहो मुझे बुला लो मैं गया हुआ वक़्त नहीं के फिर लौट के ना आऊं ऐं वरी कंहिं उर्दू जे शायर हीअं चयो खुदा के वास्ते अब बेरुखी से काम न ले तड़प के फिर कोई तेरे दामन को थाम न ले जमाने भर में है चर्चे मेरे तबाही के मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई तेरा नाम न ले वरी सिंधी में शायर चयो इए नाहे तो तो सवाए जी न सकबो पर इए आहे जी तो साथी के बेसा रही न सकबो चङो यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी इन दुआ सां त जिते बि अव्हां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अव्हांजो मुक़दरु बणजनि साथ सलामत सिक सलामत अलाह निके पान

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: स्पेशल कमेटी में प्लीज प्रेजेंट द रिपोर्ट.
4: सर, आई राइज टू प्रेजेंट द रिपोर्ट स्पेशल कमेटी ऑन लोकल गवर्नमेंट बिल नंबर 32 ऑफ 2026. द सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड बिल 2026. तो इन्होंने सपोर्ट किया है बिल को एक्सेप्ट फ्यू इश्यू और टोटली बिल को इन्होंने सपोर्ट किया है. अब ये बहाना बनाकर इस पर बिजनेस को ओवर रूल करवा रहे हैं. सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड बिल 2026 मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द असेंबली एट वंस.
5: लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द असेंबली एट वंस. Now I put the motion to the House. Those who are in the favor may say aye, and those who are against it may say no. I have it, and the motion is carried.
6: काउंसिल जो मुद्दो खत्म थियण ते मेयर ऐं चेयरमैन ई एडमिनिस्ट्रेटर जा अख़्तियार संभालींदा. डेप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन खे काउंसिल जो कन्वीनर मुक़रर कयो वेंदो. यूसी चेयरमैन गैर कानूनी अदावतुनि जी निशानदेही करे SBCA खे
7: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। 1

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

शुरू से महके मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजर सानी करो जरा

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पासपोर्ट ब्लॉक किया वजन
4: कमेटी ऑन गवर्नमेंट बिल नंबर 32 और 2026 प्रेसिडेंट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट बिल 2026 मिस्टर हेड ऑफ द स्पेशल कमेटी में प्लीज प्रेजेंट द रिपोर्ट
5: सर आई राइज टू प्रेजेंट द रिपोर्ट स्पेशल कमेटी ऑन लोकल गवर्नमेंट बिल नंबर 32 ऑफ 2026 द सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड बिल 2026 तो इन्होंने सपोर्ट किया है बिल को एक्सेप्ट फ्यू इशू और टोटली बिल को इन्होंने सपोर्ट किया है अब ये बहाना बनाकर इस पर बिजनेस को ओवर रूल करवा रहे हैं द सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड बिल 2026 मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द असेंबली एट वंस
6: Local Government Amendment Bill 2026 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are in the favor may say aye. And those who are against it may say no. I leave it. And the motion is carried.
3: काउंसिल जो मुद्दो खत्म थियण ते मेयर ऐं चेयरमैन ई एडमिनिस्ट्रेटर जा अख़्तियार संभालींदा डिप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन खे काउंसिल जो कन्वीनर मुक़ररु कयो वेंदो यूसी चेयरमैन गैर क़ानूनी अदावतुनि जी निशानदेही करे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खे इतलाउ ॾियण जा पाबंद हूंदा सिंध असेंबली अपोज़िशन जे गोड़ दौरान मकानी क़ानून में तरमीम लाइ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2026 अक्सरियत राय सां मंज़ूरु करे वरितो बिल में सुलह वारे फोरम जो इज़ाफ़ो 90 ॾींहनि अंदरि फोरम क़ाइमु करणु लाज़मी हूंदो सुलह वारो फोरम अवामी मसलनि जे हल लाइ पुलिस सां राब्तो करे सघंदो मकानी इदारा इलेक्शन कमीशन खे मुदो मुकमल थियण खां 120 ॾींहं अॻु चूंडू करण लाइ ख़त लिखंदा बिल जी मंज़ूरी दौरान मुखालिफ़ दुर पार्टियुनि जो सख़्तु एहतजाज स्पीकर जे ढाई सालु नारेबाज़ी बाद एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं ऐवान मां बि वाकव
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।